श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आपने सुना बालकांड भाग 47। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रखे गए। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना टोलैम इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु अपि च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विस्तृतं चर्चां करिष्यतः। वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य त्रिदिवसीया यात्रायां ह्यः नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। तेन सह वियतनाम सर्वकारस्य अनेकेषां मन्त्रिणां वरिष्ठाधिकारिणां च उच्चस्तरीयः प्रतिनिधिमण्डलम् अस्ति। सहैव एकं प्रबलं वाणिज्य प्रतिनिधिमण्डलमपि समूहेन सह अस्ति। अस्मिन् वर्षे अप्रैल मासे वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिरूपेण निर्वाचनानन्तरं राष्ट्रपत्युः टोलैम वर्यस्य भारतस्य एषा प्रथमा राजकीय यात्रा अस्ति। भारतस्य कर्पास क्षेत्रस्य बाधायाः निवारणाय, विकासे न्यूनतायाः समाधानाय, गुणवत्तायाः चिन्तायै च केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन कर्पास उत्पादकता अभियान कपास कान्ति इत्यस्य कृते 600.5 लाख कोटि रूप्यकाणि स्वीकृतानि। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इदम् अभियानं सर्वकारस्य फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन इति 5F विषयैः सह संरेखितमस्ति। कर्पासस्य उत्पादकतां वर्धयितुं च केन्द्रितमस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन आपत्कालीन ऋण रेखा प्रत्याभूति योजना 0.5 अनुमोदिता। योजनायाः अन्तर्गतं MSME इत्येतेषां कृते 100% ऋण प्रत्याभूतिः प्रदीयते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारत सेमीकण्डक्टर मिशन इत्यस्यान्तर्गतम् इतोपि द्वे सेमीकण्डक्टर परियोजने अनुमोदिते।
2: दो नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से दो में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: एतेषु सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सौकर्येण सह गैलियम नाइट्राइड तंत्रज्ञानस्य आधारे देशस्य प्रथमा वाणिज्य लघु माइक्रो LED प्रदर्शन सौविध्यम् अन्तर्भवति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 26 संसदि उपस्थापयितुं प्रस्तावोऽपि स्वीकृतः। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् एतत् विधेयकं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या अधिनियमः 59.5 इत्यस्य संशोधनं कर्तुं प्रयतते।
2: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पदात् स्वत्यागपत्र प्रदानाय निराकृतवती। तस्याः अनुसारं मतानि बलात् लुण्ठितानि, मतदान प्रक्रियायां च कपटम् अभवत्।

0: Para pemirsa yang terhormat, kami mohon agar dikirim saran-saran Anda dan laporan Anda mengenai daya penangkapan siaran kami ini di daerah Anda masing-masing. Saran-saran Anda sangatlah membantu kami meningkatkan mutu siaran kami ini. Harap saudara catat alamat kami yang adalah sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda sangatlah ditunggu di meja tugas kami di sini, di studio. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar, penyiar Anda Kishore Das bersama dengan semua staf Seksi Bahasa Indonesia sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.
1: Namaskar, Akashwani se Samachar Prabhat ke saath main Munish Sharma. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की. आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा. और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे.
2: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा. वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे. आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है. आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं. आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
3: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक

0: और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉ. मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई असेंबलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआईए ने आईएसआईएस के राबते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्जाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर वसी बातचीत करेंगे। वो बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। वियतनाम के सदर कल भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने किया। उनके हमराह वियतनाम हुकूमत के बहुत से वजीरों और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतही वफद भी आया है। उनके साथ सरकर्दा ताजिरों का एक वफद भी है। सदर तोलाम का इस साल अप्रैल में वियतनाम के सदर के तौर पर चुने जाने के बाद भारत का ये पहला सरकारी दौरा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वियतनाम के सदर तोलाम को आज राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाज़ाब्ता रस्मी इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो राजघाट में महात्मा गांधी को गुलाए अकीदत नजर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर के दरमियान बातचीत के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे और उनका तबादला किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वियतनाम के अपने हमनसब के साथ आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दौरे पर आए मेहमान से मिलने जाएंगे। वियतनाम के सदर आज इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के जेर एहतमाम 56वां सप्रू हाउस लेक्चर भी देंगे। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: भारत के इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस को इंतखाबात के बाद किसी भी किस्म के तशद्दुद को कतई बर्दाश्त न किए जाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। जमीनी सतह पर सूरतेहाल का जायजा लिए जाने के बाद जारी किए गए एक हुक्मनामे में कमीशन ने सख्त और फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर दिया ताकि असेंबली इंतखाबात के नतीजे के बाद अमन कानून को बरकरार रखा जाए। इंतखाबी कमीशन ने रियासती इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो इंतखाबी नतीजे के ताल्लुक से डराने धमकाने, बदले या टकराव की किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। कमीशन ने हुक्काम को यह भी हिदायत दी है कि वो तमाम शहरियों, खुसूसन कमजोर ग्रुपों और सियासी कारकुनान की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाएं और हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की नुमाया मौजूदगी को बरकरार रखें। सीनियर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो चौकस रहें और रियासत में होने वाले किसी भी वाकये की इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करें। ये हिदायत तशद्दुद के उन अलग अलग वाकयात के बारे में तश्वीश के दौरान जारी की गई हैं जिनकी इत्तला नतायज के ऐलान के बाद दी गई थी, जो इंतखाबात के बाद रियासत के इलाकों में बार बार उभरने वाला मामला है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद नई असेंबलियां तश्कील दिए जाने की गरज से नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी अमल के इख्तिताम पजीर होने और नई सरकारों की तश्कील के मकसद से रियासतों के गवर्नर्स और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान को भेजे गए हैं। इंतखाबी कमीशन के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि नोटिफिकेशन का इजरा चुनाव नतीज के ऐलान के बाद एक कलीदी आईनी कदम है और इसके साथ ही इंतखाबी कमीशन की जानिब से नई असम्बलियां तश्कील दिए जाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। अहदेदार ने यह भी कहा कि कमीशन ने असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के दौरान सभी जाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया है। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक पूरा अमल कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया है। नोटिफिकेशन

0: रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुंतखबा नुमाइंदों की हलफ बरदारी और नई सरकारों की तश्कील की राह हमवार हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि भारत एक जमहूरियत है और इसका हमेशा एहतराम किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल की सुबुकदोश होने वाली वजीर आला ममता बनर्जी की मुबैना राय जनी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इस तबसरे को इंतशार पैदा करने वाला करार दिया और ममता बनर्जी पर जोर दिया कि वो इस किस्म के बयान देते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करें। जनाब पात्रा ने कहा कि ये तबसरे तशवीश का बायस हैं क्योंकि मुल्क की जमहूरियत में इक्तदार की मुंतकली हमेशा पुरम तरीके से हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बीजेपी पर हमला नहीं है बल्कि ये जमहूरियत और मुल्क के आईन पर हमला है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: बीजेपी ने सीनियर पार्टी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह को मगरबी बंगाल में लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया है, जबकि ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी को रियासत में मरकजी मुआविन मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा को आसाम में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी को रियासत में मुआविन मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और पुदुचेरी में बीजेपी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना को पुदुचेरी में मरकजी मुशाहिदीन मुकर्रर किया गया है। बीजेपी के पार्लियामानी बोर्ड ने मरकजी मुशाहिदीन के लिए इन नामों की मंजूरी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर मुबारकबाद दी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कुश देसाई ने कहा कि सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को हालिया तारीखी और फैसलाकुन इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दी है। बीजेपी ने 294 रुकनी बंगाल असेंबली में 206 सीटें जीती हैं, जबकि ममता बनर्जी की क्यादत वाली तृणमूल कांग्रेस ने महज 80 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इधर आसाम में बीजेपी ने मुसलसल तीसरी मरतबा अपना इकतदार बरकरार रखा है, जबकि पुदुचेरी में एनडीए ने 30 से 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में एक वाहिद बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाली टीवीके रियासत में हुकूमत साजी का दावा पेश करेगी। पार्टी का कहना है कि उसके लीडर जोसेफ विजय आज गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात करके रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टी का दावा पेश करेंगे। टीवीके को रियासती असेंबली में अक्सरियत हासिल करने के लिए मजीद 10 अरकान असेंबली की हिमायत की जरूरत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को एक बायोलॉजिकल जहर देने की आईएसआईएस की एक साजिश में इन लोगों के मुलव्वस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। हैदराबाद में मुकीम डॉक्टर सैयद अहमद मुहीउद्दीन और उत्तर प्रदेश के साथी मुलजिम आजाद और मोहम्मद सुहेल को गुजरात के शहर अहमदाबाद में एनआईए की खसूसी अदालत के सामने ये फर्द जुर्म पेश की गई है। मुलजिमीन ने दौलत इस्लामिया से वाबस्ता बैरून मुल्क मुकीम अपने आकाओं की हिदायत में काम करते हुए अपने आकाओं की तरफ से कमजोर नौजवानों को इंतहा पसंद बनाकर भर्ती करने के लिए उनसे मिलजुल कर काम किया था ताकि जिहाद में मदद दी जा सके और ममनुआ हथियारों नीज बायो टेररिज्म के जरिए दहशत फैलाई जा सके। उन्होंने एक इंतहाई जहरीले मादे रिसिन या अरंड के इस्तेमाल की मंसूबा बंदी की थी जिसे कीमियावी हथियारों के कन्वेंशन की पहली फहरिस्त में शामिल किया गया है। इन लोगों का मकसद आईएसआईएस के इन नफरत अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ाना था। यह केस इब्तदाई तौर पर चीन के एक एमबीबीएस डॉक्टर मुहीउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वैड ने दर्ज किया था। मुहीउद्दीन गैर कानूनी हथियार एक टोल प्लाजा से गुजारते हुए पकड़ा गया था। उसके पास से नवंबर 2025 को अरंड के 4 लीटर तेल पर मुश्तमिल एक बोतल और मुजरिमाना नौयत की कुछ दीगर चीजें बरामद की गई थीं। एटीएस ने तफ्तीश के बाद उसी दिन मजीद 2 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया था। पंजाब में कल शाम जालंधर में सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स के सख्त हिफाजती इंतजामात वाले मरकजी दरवाजे के करीब एक धमाका होने से इलाके में खौफ व हिरास और तश्वीश पैदा हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ऑनलाइन सामान डिलीवरी कंपनी में काम करने वाला एक डिलीवरी बॉय बीएसएफ एहलकारों को पार्सल पहुंचाने आया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों की रहनुमाई करने वाला एक मिशन है, कुछ वक्फे के लिए रोका जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि महाजराई को खत्म करने के लिए ईरान के नुमाइंदों के साथ एक जामे मुआहदा किए जाने की तरफ बड़ी पेशरफ हुई है। उन्होंने वजाहत की कि हालिया फौजी कार्रवाई और सिफारती बातचीत की पेशरफ की रोशनी में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक मुख्तसर वक्फे के लिए आबनाए हुरमुज में जहाजों की इस कार्रवाई को रोकने का एक बाहमी फैसला किया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वक्फे से इस बात पर गौर वखोज करने का वक्त मिल जाएगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक कतई मुआहदा किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने यह ऐलान वजीर खारजा मार्को रूबियो की तरफ से यह कहे जाने के बाद किया है कि ईरान में अमरीका इसराइल के इब्तदाई हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इस कार्रवाई के मकासद हासिल हो जाने के बाद खत्म कर दिए गए हैं। इतवार को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक ने अमरीकी मदद के लिए दरख्वास्त की थी कि उनके जहाजों को लड़ाई में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के नॉट आउट 87 रन और कार्तिक शर्मा के 41 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए दरकार 156 रन के लिए खेलते हुए नई चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 ओवर्स और तीन गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। संजू सैमसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज बिहार और मगरबी बंगाल के गंगा की तराई वाले इलाके में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि इन खित्तों में कल तक 60 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमे ने यह भी बताया है कि आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और सिक्किम में भी शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में इतवार तक मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। इस दौरान महकमे ने मगरबी राजस्थान में हफ्ते से पहर तक इक्का दुक्का मकामात पर शदीद गर्मी पड़ने की भी पेशगोई की है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
2: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी से छाए होने वाले आज के रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस के अलावा दीगर अखबारात ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की सख्त मजम्मत किए जाने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। भारत और जापान का सेहत के शोबे में तआवुन को मजबूत करने पर जोर, इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस बयान को भी आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल और आसाम समेत पूरे मुल्क को तरक्की देंगे। बीजेपी ने अमित शाह को मगरबी बंगाल और जेपी नड्डा को आसाम का मुबसिर मुकर्रर किया है। इस खबर को तकरीबन सभी अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाया किया है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नई असेंबलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआईए ने आईएसआईएस के राब्ते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्जाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819

किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग विभास में ख्याल। कलाकार हैं शिव प्रसाद राव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी शिवप्रसाद राव का गाया राग विभास में ख्याल। इसके साथ ही स्वरगम का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम साइंस।

अभी आप साइंस मैगजीन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम।

Truly. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزوه.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवी के को

0: समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने आज पेइचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with visiting Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. Both the leaders are expected to discuss wide-ranging bilateral issues. Tho Lam, who is on a 3-day visit to India, was earlier accorded a ceremonial welcome at Rashtrapati Bhavan this morning. The Vietnamese leader was received by President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi upon his arrival at Rashtrapati Bhavan. We have a report.
2: After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. President Tho Lam's visit coincides with the special occasion of the two countries marking the 10th anniversary of the elevation of relations to a comprehensive strategic partnership agreed during the visit of Prime Minister Modi to Vietnam in 2016. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The Prime Minister has welcomed the Cabinet's approval of railway projects covering 19 districts across Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. In a series of social media posts, Mr. Modi said that the projects will enhance connectivity and improve operational efficiency while boosting the country's infrastructure and economic growth. Mr. Modi also appreciated the Cabinet's decision to increase the strength of judges in the Supreme Court from 33 to 37. He said that the decision will strengthen the judicial infrastructure of the nation and will ensure speedy justice for people. Education Minister Dharmendra Pradhan has condemned the alleged remarks of Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee that she will not resign and tender her resignation to the governor as the outgoing chief minister. In a social media post, he accused that resistance to accountability and the refusal to accept the public's mandate by Trinamool Congress is an example of compromised democracy in Bengal. He said that she is not just rejecting the people's mandate, but also attempting to erode the credibility of institutions like the Election Commission and security forces, undermining the pillars that ensure free, fair and secure elections. In Tamil Nadu politics, the single largest party TVK, which has 108 assembly constituencies, is short of 11 MLAs to reach the majority of 118. TVK is in discussion with parties, including Congress. Congress spokesperson Girish Chudankar has said that it will be decided after the meeting to give support to TVK. Lima Rose, the winning candidate from AIADMK, said that her party is in discussion to lend support to TVK. The government has debunked a digitally altered video circulating on social media, which features Defence Secretary Rajesh Kumar Singh claiming that Pakistan jammed India's systems on 10th of May last year. In a social media post, the fact-check unit of PIB clarified that the video is an AI-generated deepfake and is being circulated by Pakistani propaganda accounts to spread misinformation. The unit has also urged the citizens to not fall prey to such videos and report such suspicious content on 8799-711-259 or mail at factcheck@pib.gov.in. In Iran, 8 people have been killed and 36 other injured in a fire incident at a shopping center near capital Tehran. The state TV has reported that the fire started yesterday in the Arghavan shopping center in Andishah town in Tehran province. However, cause of the blaze is still unknown. In IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad will take on Punjab Kings this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Chennai Super Kings defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. Sensex and Nifty are trading marginally higher in the forenoon session. The Sensex rose 105 points to 77,123, while the Nifty added 65 points to 24,098 when reports last came in. On the sectoral front, gains in pharma, chemicals and auto stocks are driving the market up. And that is the end of this news bulletin.

घर आंगन। साथियों, खेल की दुनिया हो, सामाजिक उद्यमिता की बात हो या प्रकृति का सरोकार, सब में एक रूपता इस बात की है कि जब भी कोई बड़ी सफलता हासिल होती है तो उसके

टीम काम करती है, जैसे उड़ते हुए पंछियों के झुंड लगातार दिशा निर्देश के मोहताज नहीं होते, बल्कि पूरी टोली के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि हर पक्षी हवा की दिशा समझता है, ताल को महसूस करता है और समूह के साथ सरलता से उड़ता जाता है। और यही है सच्ची टीम भावना, यानी कार्य संस्कृति की खूबसूरती। नमस्कार, घर आंगन का सफर है आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी मनीषा बोस के साथ। हमारे कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल के मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ और यूट्यूब चैनल AIR लाइव न्यूज 24x7 पर भी सुन सकते हैं आप। तो आप सभी का सत्कार, ढेर सारा प्यार। और ये सच है साथियों कि अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन टोली साथ हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है, और उसे ही कहते हैं टीम भावना। अदृश्य धागे की तरह है जो आपस में बांधकर संस्कृति की प्रेरक शक्ति बन हम सबको दिशा देती है। सोचिए, क्रिकेट का मैच, परिवार की जिम्मेदारी या ऑफिस का प्रोजेक्ट, जीत सिर्फ स्टार खिलाड़ी की नहीं होती, बल्कि पूरी टीम के तालमेल से जीत मिलती है। इसीलिए टीम भावना में मैं से ऊपर उठकर हम बनना हमें सिखलाया जाता है, है ना? हम जानते हैं कि एक ईंट दीवार नहीं बना सकती, लेकिन कई ईंटें मिलकर मजबूत घर को शक्ल जरूर देती हैं। टीम वर्क, जिससे ना सिर्फ उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि संचार, नवाचार और समस्या का समाधान भी सरलता से मिलता जाता है, है ना? क्योंकि टीम वही जीतती है दोस्तों जिसमें हर सदस्य दूसरे की ताकत बनता है, जैसा हमारा ये रेडियो परिवार, हम और हमारे श्रोताओं का ये प्यारा सा संसार।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में रंगोली फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। और दोस्तों, आज की तारीख भारतीय इतिहास में खास है, क्योंकि आज स्वतंत्र भारत की नींव रखने वाले और स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी की आज जयंती है। उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि कोल्हापुर के दूरदर्शी मराठा शासक और महान समाज सुधारक महर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज की पुण्यतिथि का दिन भी है आज। 6 मई 1922 को पंचतत्व में विलीन इस मराठा शासक ने दलितों, पिछड़ों के उत्थान और उनके शिक्षा के लिए काम किया। सच्चे प्रजावत्सल समाज सुधारक इस शासक को राजर्षि की उपाधि भी इसीलिए दी गई थी। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपनी पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब आपसे कहना चाहती हूँ, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की वो पंक्तियाँ जो हम सभी के लिए हमारे जीवन में बहुत प्रभावशाली हो सकती हैं, और वो कहते हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ बने रहें FM गोल्ड 100.1 पर। घर आंगन में चलते रहें, गुनगुनाते रहें हमारे साथ।

साजन बिना सुहागन, इस फिल्म से आप यशोदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत सुन रहे थे। दोस्तों, एफएम गोल्ड 100.1 पर घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम से जुड़कर आप कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमसे, ये सब बातें हम भी जानना चाहते हैं। और ये सभी बातें आप हमसे कह सकते हैं अपने संदेश के माध्यम से, और संदेश के लिए आपके पास हमारा जो रास्ता है वो रास्ता होता है मेल का, जो है fmgoldga@gmail.com पर। तो यहाँ पर आपके संदेशों की प्रतीक्षा है हमें, और आपसे कहना चाहती हूँ जिस तरह बोलना एक कला है, उसी तरह सुनना भी एक कला है, और वो कला हमारे श्रोताओं को बखूबी आती है ना। हम दिन भर कितने लोगों को सुनते हैं दोस्तों, और सच में ध्यान से कितने को सुनते हैं जरा सोचिएगा। और जानते हैं, हम जो सुनते हैं उसका 25% भी याद नहीं रख पाते, क्योंकि हम सुनते हुए भी सोच रहे होते हैं कि अब क्या बोलना है। क्यों, सच कहा ना मैंने? इसीलिए सुनने और ध्यान से सुनने में ना बहुत अंतर होता है। और ध्यान से सुनने में हम सिर्फ कान को नहीं, बल्कि अपने मन को, मस्तिष्क को और हमारी संवेदनाओं को भी जोड़ते हैं। अध्ययन भी बताते हैं साथियों कि अच्छे श्रोता वो होते हैं, और जो सुनते हैं उनमें नेतृत्व के गुण आ जाते हैं, और उनमें संबंधों को अच्छे से बना के रखना भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि कई बार समाधान बोलने में नहीं, अच्छे श्रोता बनने में छिपा होता है। इसीलिए पहले सुनिए, फिर समझिए, क्योंकि हर कहानी सुनी जाना चाहती है। जैसे आप हमारे अच्छे श्रोता साथी हैं, और आप हमें अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और फिर अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं।

यशुदास और हेमलता की ये सुरीली सी आवाज़ में आप सुन रहे हैं चिच्चोर फिल्म का ये गीत। और साथियों, एक कहावत है कि हुनरमंद हर जगह पूजा जाता है। और बात हम कर लेते हैं हुनर की, चली है तो हुनर और कौशल से भरपूर उस ताकत की, जहां हुनर ऑनलाइन है और अवसर ग्लोबल। जी हाँ, बदलाव की असली चाबी है डिजिटल स्किल्स में। कंप्यूटर, एआई, डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन उद्यमिता जैसी क्षमताएं भारत के हर युवा को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही हैं। तकनीकी युग में मोबाइल फोन जो सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है दोस्तों, बल्कि रोजगार का साधन भी बन रहा है ना। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजाइनिंग, डेटा एंट्री जैसे डिजिटल कौशल के कार्यों से घर बैठे भी कमाई के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। डिजिटल स्किल्स जिसे सीखने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता दोस्तों, बस आपका फोन, इंटरनेट और सीखने का जज्बा। और जानते हैं, इसके लिए हमारी सरकार की स्किल इंडिया डिजिटल पहल ने स्किलिंग, रोजगार और उद्यमिता को एक डिजिटल मंच भी दिया है। सरकार ने डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कई आधिकारिक मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च किए हैं, जहां फ्री सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग दी जा रही है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम जैसे कार्यक्रम एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत बना रहे हैं। और स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी कि SIDH ऐप, दीक्षा ऐप, फ्यूचर स्किल्स प्राइम स्वयं प्लेटफॉर्म, फीचर्स कर्मयोगी और ई पाठशाला जैसे लर्निंग ऐप हैं, जहां आप सर्च कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी ले सकते हैं और सीखने की दिशा में अपना अगला कदम भी आप बढ़ा सकते हैं।

आशा भोसले की आवाज़ में नरम गरम फिल्म से आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत। और हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे श्रोता साथी भी हमारे साथ हैं जो सुनना चाहते हैं अपनी बात जिसको उन्होंने हम तक पहुंचाया है। और ये पहला संदेश है मेरे पास गौरी शंकर नांगलोई जी का, जिन्होंने कहा है राम राम जी, राम राम आपको भी। और उन्होंने कहा कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है और शिक्षा पद जानकारियां उन्हें मिल रही हैं। सुदर्शन मुखी हमारे साथ हैं, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं, शांति नगर सोनीपत से। कार्यक्रम उन्हें भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपनी एक बात कही है कि बोलना कला है तो सुनना भी एक कला है। सुनने के लिए प्रभु ने कान दो दिए हैं और बोलने के लिए मुंह एक दिया है। जी बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हमें सुनना ज्यादा गौर से चाहिए। और हमारे एक और श्रोता साथी हैं, वो हैं उग्रसेन यादव जो नई दिल्ली से हैं। कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे एक और श्रोता साथी हैं, वो हैं नवीन भाटिया जी मोती नगर दिल्ली से। कार्यक्रम उन्हें भी अच्छा लग रहा है और कार्यक्रम के गीत भी उन्हें अच्छे लग रहे हैं। जी हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमें सुन रहे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। घर आंगन कार्यक्रम 100.1 MHz पर आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेरों जानकारियां, ढेरों बातें और ऐसा ऐसा काम, ऐसी बातें, ऐसी जानकारी जिसको सुनकर आपके जीवन में भी हो जाए कायाकल्प। दोस्तों हमारे समाज में चारों तरफ जो बयार बह रही है वो लैंगिक समानता के अधिकारों को और पुख्ता बनाने के लिए चल रही है। देखो ना, आज आज जो सारा क्षेत्र है उसमें आधी आबादी जो है उसका सशक्त हस्ताक्षर हमें दिख रहा है। क्या कहते हैं आप? और जानते हैं नारी शक्ति की परिभाषा को नया आयाम देने वाले लोगों में एक नाम आता है जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और वो नाम है स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, साहित्यकार और महिला अधिकारों की प्रखर प्रहरी डॉक्टर हंसा मेहता का। पूरी दुनिया की सोच बदलने वाली वे भारत की संविधान सभा की उन चुनिंदा 15 महिलाओं में शामिल रही हैं जिन्होंने नए भारत की नींव गढ़ी। कैसे बताऊं आपको? दरअसल 1947 से 1948 के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हुए घोषणा पत्र में उन्होंने ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल को बदला कर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल करवाया। यानी अधिकार सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए समान है। शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय डॉक्टर हंसा मेहता के लिए मिशन थे। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस से जुड़कर महिला अधिकार चार्टर तैयार कर उन्होंने भारत में बराबरी की सोच को नई दिशा दी। उनकी दूरदृष्टि ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में महिलाओं को उनकी पहचान और अधिकार से जोड़ा। और ये सच है दोस्तों कि नारी कलम उठाकर इतिहास बदल सकती है। और तब तो हंसा मेहता एक थीं, लेकिन आज देश के कोने कोने से कई हंसा मेहता, यानी कई हंसा हैं जो अपने हस्ताक्षर गढ़ रही हैं। तो उम्मीद है इस जानकारी ने आप में भी जोश बढ़ाया होगा। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हमारे इस कार्यक्रम को। और ये खूबसूरत है।

पैगाम इस फिल्म से आप सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में इस खूबसूरत से नगमे को सुन रहे थे। और दोस्तों, गर्मी का जो मौसम है वो हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश कहीं हो रही है, कहीं बादलों ने अपना थोड़ा सा रंग दिखाया है और हमें थोड़ी सी राहत पहुंचाई है, लेकिन बावजूद उसके मौसम तो गर्मी का है ही ना। और ऐसे में गर्मी से बचने के लिए हम तमाम उपाय कर ही रहे होते हैं, है ना। कभी कूलर के सामने बैठे होते हैं, पंखों के सामने होते हैं, एसी, ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडई, सूती कपड़े, ऐसे तमाम उपायों को हम अपना रहे होते हैं गर्मी से राहत के लिए, है ना। पर सूरज देवता की सीधी दृष्टि गर्मी की तपिश को और बढ़ाती ही जाती है। तो चलिए, गर्मी के दिनों में जब सूरज देवता रहम नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमें शरीर के स्मार्ट कूलिंग को ऑन कर देना चाहिए। जानते हैं ये क्या है? स्मार्ट कूलिंग जो बिना पंखे, बिना एसी के हमें ठंडा बनाकर रखता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। हमारे शरीर को एक कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। जानते हैं, जब शरीर का तापमान बढ़ता है दोस्तों, तो हमारा जो दिमाग है उसमें खास तौर पर हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा तुरंत एक्शन में आ जाता है। नतीजा पसीना आता है, और पसीना जब त्वचा से उड़ता है तो शरीर की गर्मी भी अपने साथ ले जाता है, और यही है नेचुरल इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। और साथियों, इस तरीके से हम हमारी जो त्वचा है उसकी रक्त नलिकाएं भी गर्मी लगने पर फैल जाती हैं, ताकि ज़्यादा गर्मी त्वचा के जरिए बाहर निकल सके। और इसीलिए तो गर्मी में हमारा जो चेहरा है वो लाल हो जाता है, देखा होगा आपने भी। दरअसल शरीर की सुरक्षा रणनीति के तहत ये सारे इंतजाम हमारा शरीर खुद करता है, लेकिन ध्यान रहे उसके लिए हमें भी शरीर की मदद करनी चाहिए। जैसे पानी कम पिया जाए तो हमारा कूलिंग सिस्टम धीमा हो जाता है, इसलिए गर्मियों में पानी ज़्यादा, खाना हल्का और धूप से बचाव, तीनों है ज़रूरी। अपने शरीर के संकेत को समझना, उसे सपोर्ट देना ही तंदुरुस्त जीवन की थाती है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मौसम को आने जाने देते रहें, और सुनते रहें FM गोल्ड।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना पारस मणि फिल्म से इस गीत को। साथियों, प्रकृति है तो हम हैं, है ना। और किसी की एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने क्या खूब कहा है, गौर कीजिएगा आप सभी, कि एक पतली पगडंडी, मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यहीं थी कभी गांव की नदी, आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार, मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। नन्ही पीढ़ी दौड़ी और बोली, हम आ गए बाजार। क्या क्या लेना है, पूछने लगा दुकानदार। कहा, भैया थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, दो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो। और ये बारिश इतनी महंगी क्यों? उसने कहा, नमी यहाँ की नहीं, दूसरे ग्रह से आई है, मंदी है, छटाक भर मंगाई है। जी हाँ दोस्तों, इन पंक्तियों ने जिस दृश्य को हमारे सामने रखा है वो बतलाते हैं कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जैसे जंगल में गिरा पत्ता कचरा नहीं बनता, बल्कि मिट्टी का पोषण करता है, उसे उपजाऊ बना देता है। विज्ञान इसे प्रकृति का रिसाइकलिंग सिस्टम कहता है, यानी कि पुनर्चक्रण, जहां पेड़ पौधे जीव जंतु मिट्टी पानी और सूक्ष्म जीव मिलकर हर तत्व को फिर से उपयोगी बना देते हैं, है ना। हमारे पारिस्थितिकी की विज्ञान के अनुसार जो अपघटन या विघटन की प्रक्रिया है और जो पोषक तत्व चक्रण की प्रक्रिया है, वो हमारी धरती के लिए जीवन चक्र की बुनियाद की तरह है। दोस्तों, इस्तेमाल करें और फेंकें, यानी यूज एंड थ्रो नहीं, यूज एंड ट्रांसफॉर्म पर चलने की बात और संदेश हमारी प्रकृति हमें हमेशा देती आई है। इसीलिए तो सूखे पत्ते खाद बनते हैं, बारिश का पानी धरती को रिचार्ज करता है और एक जीव का अवशेष दूसरे जीवन का आधार बनता है। लेकिन जब हम इंसान अपनी सुविधाओं के लिए और सुविधा भोगी बन जाते हैं तो इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ने लगता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है ना। ऐसे में कचरा कम करना, वस्तुओं का बार बार उपयोग करना और पुरानी चीजों को नया रूप देना, यानी कि उसे रिपर्पस करना, ये सब बातें कार्बन उत्सर्जन को, प्रदूषण को कम करने और संसाधनों को बचाने के लिए आज समय की मांग है। इसीलिए सस्टेनेबल लिविंग आज की जरूरत है दोस्तों। प्रकृति की तरह जीना, हर चीज का मान करना, कुछ भी व्यर्थ ना करना और हमारे रिश्तों को इसी तरीके से हम मजबूत करते हुए अपनी जिंदगी को, अपनी धरती को सुंदर बनाते जाएंगे।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना चोरी चोरी फिल्म से इस गीत को। और दोस्तों, अब एक प्रेरक कहानी आपके लिए। एक कहानी है जिसमें एक स्त्री बस में चढ़ती है। एक पुरुष के बगल वाली सीट में बैठते समय उसके बैग से पुरुष को चोट लग जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता है। इस पर उस महिला से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ लेती है कि आपको मेरी वजह से चोट लगी, फिर भी आपने शिकायत क्यों नहीं की? तब पुरुष मुस्कुरा कर उसे जवाब देता है और कहता है कि इतनी छोटी सी बात पर नाराज होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी साथ की यात्रा बहुत छोटी है, मुझे अगले स्टॉप पर ही उतरना है। उत्तर सुनकर महिला भावुक होती है और माफी मांगती है, और मन ही मन सोचती है कि सच में यात्रा बहुत छोटी है, किसी जीवन सूत्र से कम नहीं है ना। दरअसल कहानी का मर्म ये है दोस्तों कि जीवन अनमोल है, उससे भी अनमोल है समय, जिसे नाहक ही बहस करके ईर्ष्या, द्वेष और घृणा करके हम बेजा खराब नहीं कर सकते। दूसरों को माफ ना करके और असंतोष पाल के वास्तव में हम अपना समय और ऊर्जा दोनों ही व्यर्थ करते जाते हैं। इसीलिए किसी ने मन दुखाया तो शांत रहिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने धोखा दिया, धमकाया, अपमान किया तो प्रतिकार करके तनाव ना पालिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने बेवजह अपमान किया, नजरअंदाज कीजिए, उन्हें अपनी दुआओं में रखिए और निस्वार्थ प्रेम कीजिए, यात्रा बहुत छोटी है। दोस्तों याद रखिए, समस्या तभी तक समस्या है जब उसे हम अपने मन में रखते हैं। साथ का सफर बहुत छोटा है साथियों, इसलिए कृतज्ञता और आनंद से भरकर जीवन को अपनाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि ये यात्रा हमारे जीवन की सबसे

साथियों, छोटी सी ये दुनिया है, सच में हम फिर मिलेंगे। रंगोली फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे कार्यक्रम में। बस आज तक यहीं तक, तब तक के लिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देशभर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉ सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10:15। ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम। जी हाँ, आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका पसंदीदा फिल्मी कार्यक्रम, जहां हम सुनाते हैं हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की यादगार फिल्मों की कहानियां। आज की महफिल सजी है एक ऐसी ही फिल्म के नाम, जिसमें प्रेम है, त्याग है, भावनाएं हैं और मधुर संगीत की महक भी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 1958 की एक खूबसूरत सी फिल्म। वो फिल्म कौन सी है? हमेशा की तरह आप गीत सुनकर अंदाज़ा लगा ही लेंगे, और जब आप अंदाज़ा लगा ही लेते हैं तो जानते हैं ना क्या करना होता है आपको। अपने संदेश हमें मेल करने होते हैं। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और आपको बता दूं, आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। सबसे पहले सुनते हैं आशा जी की आवाज़ में इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

और जी हाँ, आप भी इस प्रोग्राम में आ गए हैं, ये आपके संदेश कहते हैं, पहुंच रहे हैं आपके संदेश सही जवाब के साथ। आपको बता दें कि आज हम 1958 की एक खूबसूरत सी फिल्म लाजवंती लेकर आए हैं, जिसमें नरगिस और बलराज साहनी ने बहुत खूबसूरत सा अभिनय किया था और जिसका निर्देशन किया था नरेंद्र सूरी ने। ये फिल्म वैवाहिक गलतफहमी और एक महिला के सम्मान के लिए संघर्ष पर केंद्रित है। इसे 1959 के कान

फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी की ओर से नामांकित भी किया गया था और 1958 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी इसे योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। लाजवंती 1958 की बनी एक भारतीय ड्रामा फिल्म, जैसा कि हमने आपको बताया कि नरेंद्र सूरी ने इस फिल्म को निर्देशित किया था और ये एक सामाजिक और भावनात्मक हिंदी फिल्म थी जो कि डिलेक्स फिल्म के बैनर तले इसका निर्माण हुआ था। और नरगिस और बलराज साहनी के अलावा इस फिल्म में प्रभु दयाल, मनोरमा, मुमताज बेगम, लीला मिश्रा जैसे कलाकार नजर आए थे। सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

आशा जी की आवाज में इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत था। फिल्म की कहानी एक ऐसे दंपति के इर्द गिर्द घूमती है जिनके रिश्ते में प्रेम तो है लेकिन परिस्थितियां उनके जीवन में कठिन मोड़ ला देती हैं। बलराज साहनी ने एक संवेदनशील पति का किरदार निभाया जबकि नरगिस ने एक ऐसी पत्नी का रोल निभाया जो जीवन की कठिनाइयों और समाज की कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश करती है। नरगिस ने लाजवंती के किरदार में नारी के धैर्य, संवेदना और आत्मसम्मान को बखूबी निभाया। वही बलराज साहनी ने एक ऐसे पति की भूमिका निभाई जो भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ दिखाई देता है। यानी कि फिल्म रिश्तों की नाजुकता, विश्वास और समाज की सोच को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: मामा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता, एक तू ही क्या मुझको भी।

जी सुपर डुपर हिट गीत इस फिल्म का मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में इतना मधुर गीत कि मन करता है इस गीत को बार बार सुना जाए। लेकिन और भी गीत हैं इस फिल्म के जो अपने आप में इतने मधुर हैं कि जिस जो मिठास उस वक्त थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इतने सालों बाद आज भी वही मिठास कायम रखते हैं। फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार SD बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म के गीत मधुर भी हैं और अर्थपूर्ण भी थे। उस दौर में गीत कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम हुआ करते थे और लाजवंती इसका सुंदर उदाहरण है। अगर हम अभिनय की बात करें तो ये फिल्म दो महान कलाकारों की अदाकारी का एक शानदार उदाहरण है। बलराज साहनी अपने सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनके संवाद बोलने का अंदाज इतना स्वाभाविक था कि लगता ही नहीं था कि वे अभिनय कर रहे हैं। वहीं नरगिस ने हर भाव को आंखों से जिया। दुख, खुशी, मौन, पीड़ा सब कुछ उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया था। और आपको एक बात बता दूं कि ये फिल्म मानवीय रिश्तों पर आधारित गंभीर विषय को लेकर आई थी, इसीलिए इसे समीक्षकों ने भी खूब सहारा था। नरगिस उस समय सामाजिक और भावनात्मक भूमिकाओं के लिए बेहद प्रसिद्ध थी और इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। तो बलराज साहनी साहब कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने अपने किरदार को वास्तविक बनाने के लिए बहुत तैयारी की, इसीलिए उनके अभिनय में सहजता दिखती है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और आज हम लेकर आए हैं 1958 की फिल्म लाजवंती। कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी सीधे तौर पर मशहूर लेखक राजेंद्र सिंह बेदी की एक संवेदनशील कहानी से प्रेरित थी। ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद के हालात और खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर लिखी गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि उस समय इस तरह के विषय पर फिल्म बनाना काफी साहस की बात मानी जाती थी। समाज में ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन निर्देशक नरेंद्र सूरी ने इसे बड़े संवेदनशील तरीके से पर्दे पर उतारने का जोखिम लिया और उनके इस जोखिम को दर्शकों ने बहुत सारा प्रेम दिया। फिल्म के दौरान नरगिस अपने किरदार में इतनी डूब जाती थी कि कई बार सीन खत्म होने के बाद भी वे उसी भाव में रहती थी। यूनिट के लोग बताते हैं कि एक इमोशनल सीन के बाद सेट पर कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, इतना असरदार था उनका अभिनय, यानी कि नरगिस जी का। इस फिल्म की खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं है बल्कि उसका साहस भी है। उस दौर में जब हल्की फुल्की मनोरंजन वाली फिल्में ज्यादा बनती थी, लाजवंती ने गंभीर सामाजिक मुद्दे को छूकर दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया था। आपके ढेर सारे संदेश भी आ रहे हैं, बस अब वक्त है उन संदेशों को मैं शामिल करूं।

बीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर प्रमिला भापसर जी हमारे साथ हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नितेश कुमार देवानगन दुर्गा प्रसाद पराग ये हमारे साथ पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। और अगला संदेश हमारे पास जो पहुंचा है वो गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी सौरव प्रमोद जी का आया है। और नेहरू चौक पैठण से सुरेश अनीता सोनल जाधव जी हमारे साथ हैं। राजू अग्रवाल केशव प्रियांशी चौधरी बास हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरी अजय देव मास्टर कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत और पूरा परिवार इनके साथ है। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। ईडामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं। विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। गाँव हीरावाली फालसिका पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला इंदू पार्वती जी हमारे साथ हैं। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम जी हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग परेरा टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन और संयम मुस्कान जी हमारे साथ हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी यूसरा जान इम्तियाज जी हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकान गुप्ता दीपा रिमझिम समलडी नवापारा से मुकेश अदिति श्रद्धा राधे और दीपक जी हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती वर्मा विनीता रुद्र जी हैं। वचिनखेड़ा से पंजाब से बिंटू टोमस पिंकी लवली आरती जी हैं। और अगला जो संदेश हमारे पास पहुंचा है वो कनाट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक हिवा आयसा जो जोया जी का है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमेल गाव्या मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं। ये संदेश छोटी बलिया करजस से अहमद बाई दुखनी जी जुड़े हुए हैं। बेवली मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर सुनीता हार्दिक जी हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी ज्योति मक्कर जी के साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट मोहला चौकुंडी बुलसन से मोहम्मद सिद्धवासी निगत परवीन शेनवास सरफराज परिवार के सभी सदस्य हैं हमारे साथ। चंडीगढ़ से सतीश बिमला अनेजा जी हमारे साथ हैं। और इसके बाद कुछ संदेश रिपीट हो रहे हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद जी हैं। नरवेश नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहान का निर्मला विशाल जी हैं। अनिल मोहन उषा मोहन टीलू नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से केथल से मधु नायक जी हैं। और भी हमारे ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता

मीना हर्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की फिल्म लाजवंती, जिसकी कहानी में स्त्री की गरिमा और समाज की नज़रिए को जिस तरीके से दिखाया गया है वो अपने समय से काफ़ी आगे था। और यही वजह है कि आज भी जब पुरानी संवेदनशील फिल्मों की बात होती है तो लाजवंती का नाम ज़रूर लिया जाता है। तो इसी के साथ अब अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, फिर अगले प्रोग्राम में एक नई फिल्म लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀਪ ਫੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇਕਾਈ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਸਵਾਮੀ ਨੇ ਓਹੀਓ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 87% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ਼ੀ ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਐਮੀ ਐਕਟਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਸੀਆਨਾ 'ਚ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਲਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ DVK ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ,
1: ਆਦਾਬ, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर के साथ बातचीत कर रहे हैं। कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में TVK आज शाम हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेगी। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15वीं रियासती असेंबली को तहलील किए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शाम आसाम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दौरे पर आए हुए वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा बाहमी उमूर के बहुत से पहलुओं पर तबादले ख्याल कर रहे हैं और कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। जनाब तोलाम भारत के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्हें आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाजाब्ता इस्तकबालिया दिया गया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका खैर मकदम किया। तमिलनाडु में TVK के बानी सी जोसफ विजय की सरबराही में नई सरकार की तश्कील के लिए सियासी बातचीत तेज हो गई है। उनकी पार्टी 118 के अक्सरियत के निशाने से कम है। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सहपहर केरला से चेन्नई पहुंचने वाले हैं। जनाब सी जोसफ विजय आज शाम गवर्नर से मुलाकात करेंगे और हुकूमत तश्कील देने के लिए दावा पेश करेंगे। कांग्रेस ने, जिसके पास 5 MLAs हैं, TVK को हिमायत देने का फैसला किया है। यह फैसला असेंबली के 9 मुंतखब अरकान की एक मीटिंग के बाद किया गया। इस दौरान किल्लियोर असेंबली हलके से 3 मरतबा कांग्रेस MLA राजेश कुमार को रियासती असेंबली में कांग्रेस का रहनुमा मुंतखब किया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी TVK की क्यादत वाली सरकार की हिमायत करेगी। तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस की जानिब से हिमायत दिए जाने के बारे में डीएमके की रहनुमा और तर्जुमान कनिमोजी सोमू ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके के साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि डीएमके हर मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। तमिलनाडु में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को, जिसने 108 असेंबली सीटें जीती हैं, अक्सरियत के निशाने 118 तक पहुंचने के लिए 11 अरकान असेंबली की जरूरत है। टीवीके कांग्रेस समेत दिगर पार्टियों के साथ इस सिलसिले में बातचीत कर रही है। कांग्रेस के तर्जुमान गिरीश चोडंकर ने कहा कि टीवीके को हिमायत दिए जाने का फैसला मीटिंग के बाद किया जाएगा। मगरबी बंगाल में चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद और नई हुकूमत की हलफबरदारी से पहले रियासती इंतजामिया की तैयारियां उरूज पर हैं। बीजेपी जराये के मुताबिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं और मुमकिन है कि वो नौ मुंतखब बीजेपी अरकान असेंबली से मुलाकात के बाद बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर के नाम का ऐलान करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब जल्द ही मुतवक्के है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: हुकूमत की तशकील का आईनी अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। मगरबी बंगाल के आला इंतखाबी अफसर मनोज कुमार अग्रवाल ने चुनाव कमीशन के नुमाइंदों के साथ आज गवर्नर से मुलाकात की और रियासत की तमाम 293 असेंबली सीटों के नतायज का गजट नोटिफिकेशन पेश किया। नई हुकूमत की तश्कील का बाकायदा अमल उस वक्त शुरू होगा जब गवर्नर को सरकारी इंतखाबी नतायज मौसूल होंगे। गवर्नर इस बात पर भी फैसला कर सकते हैं कि नई हुकूमत के बाजाबता हलफ उठाने तक अबूरी इंतजामी निजाम किस तरह काम करेगा। इसी दौरान सुबकदोश होने वाली वजीर आला ममता बनर्जी के मौकिफ ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ममता बनर्जी ने मंगल के रोज वादे किया कि वो इस्तीफा देने के लिए लोक भवन नहीं जाएंगी। इस सियासी कशीदगी के पस मंजर में बंगाल में इंतजामी मुंतकली की तैयारियां अब एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने आज असेंबली इंतखाबात के अमल के मुकम्मल होने के बाद गुवाहाटी में वाकई राजभवन में गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इंतखाबी नतीजों के ऐलान के बाद उनके इस इस्तीफे से रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए राह हमवार हो गई है। इससे कबल आसाम के आला इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने असेंबली इंतखाबात के नतीज बाजाब्ता तौर पर गवर्नर को पेश किए और नौ मुंतखब अरकान असेंबली की फेरिस्त भी उन्हें सौंपी। हालिया असेंबली इंतखाबात में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीतकर वाजे अक्सरियत हासिल की है। बीजेपी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसके इत्तेहादी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और आसाम गण परिषद ने 10-10 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस 19 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
3: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के इस मुबैना बयान की मजम्मत की है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जवाबदेही की मजाहमत और आवाम के फैसले को कबूल करने से इनकार करना बंगाल में जमहूरी निजाम को कमजोर करने की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ आवाम के फैसले को मुस्तरद कर रही हैं, बल्कि चुनाव कमीशन और सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे इदारों की साख को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों का अहाता करने वाले रेलवे प्रोजेक्टों के लिए मरकजी काबीना की मंजूरी का खैर मकदम किया है। सिलसिलेवार सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, कामकाज की कारकर्दगी में इजाफा करेंगे, नीज मुल्क के बुनियादी ढांचे और इकतसादी तरक्की को भी फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से मुल्क भर के अहम सियाहती मकामात तक पहुंचना मजीद आसान होगा। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 35 से बढ़ाकर 37 करने का काबीना के फैसले को भी सराहा। قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے ایک ڈاکٹر سمیت تین افراد کے خلاف ایک فرد جرم داخل کی ہے. یہ فرد جرم عوامی مقامات پر لوگوں کو بایولوجیکل زہر دینے کی آئی ایس آئی ایس کی ایک

0: साजिश में इन लोगों के मुलविस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। अमेरिका में भारत निजाद रिपब्लिकन रहनुमा विवेक रामास्वामी ने ओहियो के गवर्नर के लिए रिपब्लिकन नामजद 87% वोट हासिल करके जीत ली है। उन्होंने केसी पुत्श को शिकस्त दी। अब आइंदा नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एमी एक्सटन से होगा। रामास्वामी ने 2024 में मुख्तसर अरसे के लिए ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई थी, बाद में उनकी हिमायत का ऐलान किया। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रात भर होने वाले रूस के हमलों में 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ये हमले इस एकतरफा जंगबंदी से चंद घंटे कबल हुए जो यूक्रेन की जानिब से तजवीज की गई थी और आधी रात से नाफिज होना था। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी इलाके, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाज मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अंडमान व निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के बाज मकामात पर गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल नई दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर के साथ बातचीत की। कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में टीवी के आज शाम हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेगी। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15वीं रियासती असेंबली को तहलील किए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi. Several MOUs exchanged in the fields of digital technology, rare earth and medical product regulations. Hectic parleys continue in Tamil Nadu among parties as TVK is set to stake claim for forming government despite lack of majority figure. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma tenders resignation. Swearing-in ceremony of the new government to take place after 11th of May. India and European Union launch joint initiative to strengthen EV battery recycling capacity. IMD forecasts heavy rainfall over Assam, Bihar, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad to take on Punjab Kings in the evening. And now the news in detail. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed after the talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. We now go over live at Hyderabad House, where Prime Minister Narendra Modi is briefing the media on the outcomes of the talks.
2: Fast payment system bhi jald hi link hone ja rahe hain. Saath hi, ab hum dono deshon ke beech state to state aur city to city cooperation ko bhi majboot karne ja rahe hain. Friends, Vietnam इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे

0: विश्व की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
0: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉ शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
3: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने

0: के को समर्थन देने का फैसला किया है। यह निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
2: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरोती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
3: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सा उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में डीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 2:30 और पूरे 15 सेकंड हुए हैं। वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। दोस्तों, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल किसी हीरो के जैसे नहीं होते हैं, ना ही उनकी आवाज़ में वो भारीपन होता है, मगर जब भी वो पर्दे पर आते हैं तो ठहर जाती है हर एक नज़र। वो कभी मुनीम जी बनकर हिसाब मांगते तो कभी लालची साहूकार बनकर आंखें दिखाते, मगर असल में वो अपनी सादगी से हर दिल को जीत ले जाते। जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। और कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज एक ऐसे कलाकार को याद करेंगे हम जिसके बिना बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर अधूरा सा लगता है। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी नेजल वॉइस से, यानी कि नाक वाली आवाज़ से, और अपने एक अलग ही अनोखे अंदाज से छोटे छोटे किरदारों को भी असरदार बना दिया। वो किरदार कभी बहुत बड़े रूप में फिल्मों में नहीं आया, छोटे छोटे उसने किरदार निभाए, लेकिन वो छोटे छोटे किरदार भी उसकी एक पहचान बन गए। जी दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम उसी कलाकार के नाम, उस कलाकार का नाम चंद्रशेखर दुबे, यानी कि हम सबके चहेते CS दुबे साहब।

जी दोस्तों, जब भी सीएस दुबे साहब के बारे में सोचते हैं या उनका नाम आता है तो जहन में कैसे शख्स की छवि उभर आती है जो या तो पर्दे पर डांट खा रहा होता है या फिर किसी के सामने कुछ चालाकी से कुछ हरकतें कर रहा होता है। लेकिन आपने कभी गौर किया, उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक लय था। वो शब्दों को कुछ इस तरह से चबा करके बोलते थे कि दर्शक कभी उन्हें भूल ही नहीं पाए और ना ही भूल पाएंगे। आप देखिए, जब भी वो सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आते तो उनको देखने के बाद में या तो हमारे जहन में उनके लिए नफरत आ जाती थी या उनको देख के हंसी आ जाती थी, क्योंकि वो किरदार में इस कदर डूब जाते थे कि वो किरदार बिल्कुल रियल जैसा लगता था। चाहे शोले का वो दृश्य हो जहाँ पे वो गांव वालों के बीच में खड़े थे, या नमक हलाल, जंजीर, शान जैसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना तक हर बड़े सितारे के साथ एक अलग लाइन में काम किया। वो एक ऐसे अभिनेता थे, अभिनेता कहना शायद मतलब एक उनके लिए कुछ कम शब्द होंगे, उनके लिए कह सकते हैं कि वो एक अभिनय की संस्था थे जहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए था। और वो उन चंद कलाकारों में से थे जिन्हें संवाद रटने की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि वो किरदार को पूरी तरह से जीते थे। आज के दौर में अगर हम कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में बात करें तो जो दुबे साहब हैं उनका नाम उस फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा।

जी दोस्तों, जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सीएस दुबे साहब के बारे में। सीएस दुबे साहब के फिल्मी सफ़र की शुरुआत की जो कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। जितना उनका अभिनय दिलचस्प रहा उतना ही उनका ये फिल्मी सफ़र रहा। दोस्तों, जो सीएस दुबे साहब हैं वो बिल्कुल भी अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस किया करते थे, लोगों की मदद करना ये उनका पसंदीदा काम था। रंगमंच भी वो किया करते थे, थिएटर उनको ज़्यादा पसंद था। और फिल्मों में आने से पहले उन्होंने इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन किया और मशहूर पृथ्वी थिएटर में सालों तक उन्होंने काम किया। पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ उन्होंने अभिनय की जो बारीकियाँ सीखी वो पूरा टाइम आगे पूरी ज़िंदगी उनके काम आई और वही उनकी पहचान बनी। पहला ब्रेक जो उनको मिला फिल्मों में वो सन 1950 में मिला और उसके बाद उनकी फिल्म आई पतिता 1953 में, जिसमें उनके साथ देवानंद और सुचित्रा सेन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और फिल्म पतिता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हालांकि उन्हें जो असली पहचान मिली वो मिली 60 और 70 के दशक में, जब मसाला फिल्मों का काफ़ी बड़ा बाजार था और वहाँ पर उन्होंने कभी विलन के चमचे का रोल, कभी चालाक मुनीम का किरदार निभाया। और दोस्तों, जो सपना उन्होंने देखा कि मुंबई आएंगे, काम करेंगे, वो सफ़र उन्हें बहुत आसानी से नहीं मिला, बल्कि उसके लिए उन्होंने किया काफ़ी सारा स्ट्रगल। जब वो मुंबई आए तो उनके पास ना तो कोई गॉडफादर था और ना ही खूबसूरत सा चॉकलेटी लुक। उनके पास थी तो बस वो अपनी अलग सी अनोखी सी आवाज़। करेंगे इस बारे में और भी बातें, लेकिन पहले सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म से।

जी दोस्तों, जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सीएस दुबे जी के बारे में। मुंबई आए बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी पीछे सपोर्ट के, शुरुआत में छोटे छोटे रोल उन्हें मिले और उस दौरान कभी भीड़ का हिस्सा भी बने और कभी सिर्फ एक लाइन बोली। लेकिन उनकी प्रतिभा जो थी वो ऐसी नहीं थी कि कोई रोके रोक सके, और शायद यही वजह थी कि निर्देशक विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज निर्देशकों ने भी उन्हें नोटिस किया, नोटिस करने पर मजबूर किया उनकी कलाकारी ने, उनकी अदाकारी ने, और धीरे धीरे वो हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद बन गए। फिल्म में अगर किसी ऐसे किरदार की ज़रूरत होती जो कि चालाक भी हो, जिसकी शक्ल पे चालाकी नज़र आए लेकिन उसे देखकर हंसी भी आए और गुस्सा भी आए, तो बस समझ जाइए कि वो किरदार सिर्फ और सिर्फ सीएस दुबे साहब के लिए लिखा गया है। और 60, 70 और 80 के दशक में शायद ही कोई ऐसी बड़ी फिल्म होगी जिसमें दुबे साहब का चेहरा नजर ना आया हो। उन्होंने अपने इस लंबे फिल्मी सफर में 250 से लेकर 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी मेन विलन थे ही नहीं। जी हाँ, मेन विलन वो कभी नहीं रहे, उन्होंने हमेशा विलन का दायां हाथ बनना पसंद किया, या उनका चालाक जो सलाहकार होता था, जो उन्हें सलाह देता था, जिसके बिना विलन का कोई भी प्लान काम ही नहीं करता था। और शायद यही वजह थी कि हर फिल्म में विलन के साथ में नजर आते थे सीएस दुबे साहब।

जी हाँ दोस्तों, फिल्में अगर कोई भी आती थी उस दौरान में पर्दे पर, अगर सीएस दुबे ना हो किसी फिल्म में तो उस फिल्म में नूर ही नहीं होता था। जी हाँ, राज कपूर, देवानंद, सभी के साथ उन्होंने काम किया, अभिनय की बारीकियों को समझा। राजेश खन्ना साहब के दौर में वो फिल्मों का एक ऐसा ज़रूरी हिस्सा बन गए कि उनके बिना फिल्म बने ऐसा हो ही नहीं सकता। और अमिताभ बच्चन साहब का जब एंग्री यंग मैन वाला दौर आया तो दुबे साहब जी अक्सर उन किरदारों में नज़र आते थे जो बेचारे होते थे, एकदम सिस्टम की मार झेलते हुए, या फिर ऐसे खड़ूस या ऐसे काहिया लोग बनते कि जो सिस्टम का फायदा उठाते थे। और छोटे छोटे दृश्यों में, छोटी छोटी जगहों पर वो आते थे, लेकिन उन छोटे से बीच में भी वो अपनी एक अलग सी छाप छोड़ देते थे। कभी भी उन्होंने होड़ नहीं की कि वो एक बड़े कलाकार बने या पूरी फिल्म में उनको बड़ा रोल मिले। और शायद यही वजह थी कि अभिनय के स्कूल ऑफ ड्रामा का जो स्कूल है उसमें बच्चों के लिए वो एक मिसाल के रूप में आते हैं, क्योंकि कोई भी फिल्म है उस फिल्म में उनका किरदार एक ऐसा किरदार होता है जिसके बिना उस फिल्म की कोई अहमियत नहीं होती, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है फिल्म का। वैसे ही जैसे हमारे इस कार्यक्रम का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारे सभी लिसनर्स, और उन्हीं के संदेश हमारे सामने रखे हुए हैं जिन्हें हम ले लेते हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अभिराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा, और मेरठ से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, अशफाक और अल्ताफ हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ हैं खतीजा बेगम, आफरीन कौसर और नीलिमा फातिमा। शाहजी बोड़खे हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जामदाड़े के साथ हिंगोली महाराष्ट्र से। चिरमिरे कुरासिया कालरी से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे। बहुत बड़ा सा संदेश हम तक पहुंचाया है अनिल मोहन जी ने, और ये संदेश इन्होंने पहुंचाया कैथल हरियाणा से। लिखते हैं कि शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि सीएस दुबे जी डायरेक्टर भी थे और सन 1961 में आई फिल्म किस्मत पलट के देख, जिसमें अनूप कुमार और प्रीति बाला लीड रोल में थे, वो सीएस दुबे जी ने ही बनाई थी। बहुत खूब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी अनिल जी, और बहुत सारी इन्होंने हम तक जानकारी दी है, लेकिन वक्त की कमी है तो क्षमा चाहूँगी अनिल जी कि ये संदेश पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन आपने जानकारी बहुत अच्छी दी है। अगला संदेश तुलसी मस्कीन जी ने हम तक पहुँचाया, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से। वीना मस्कीन, आशीष, राजा चैतन्य मस्कीन, मेघा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित केशव रिधान खुराना जी के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक आया और उसको पहुंचाने वाले हैं जगराम साहू जी, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू के साथ। और ये संदेश इन्होंने भेजा है हम तक ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने वाले हैं, ये संदेश भेजा है देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, मास्टर अल कबीर जी ने, कबीर रेडियो श्रोता संघ, डोंडी लोहारा, बालोद, छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं अनिल मोहन जी एक बार फिर से, नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपरकोट मोहम्मला चौकटी बुलंदशहर से, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार सहगल जी के साथ। चंडीगढ़ सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं सतीश अनेजा, विमल अनेजा के साथ। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन मुखी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। गाँव फरासी जिला हिसार से जुड़े हैं राजकुमार डूड़ी, प्रमोद कुमार डूड़ी। और ये अगला संदेश हम तक एक बार फिर से पहुंचाया तुलसी मस्कीन जी ने। और दोस्तों ये थे वो संदेश। स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। दोस्तों जो कार्यक्रम है इसमें आज आपने बात की सीएस दुबे जी के बारे में, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी पुरानी फिल्म में उस टेढ़ी सी मुस्कान या अलग सी आवाज़ को डायलॉग बोलते हुए देखेंगे ना, तो याद रखिए वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि सिनेमा के उस गोल्डन पीरियड की वो कड़ी है जिसने उस वक्त को जोड़े रखा है। तो दोस्तों जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि कलाकार मरते हैं लेकिन कला उन्हें अमर रखती है, और दुबे साहब ने हमें बिल्कुल यही सिखाया है कि पर्दे पर आप भले ही कुछ पलों के लिए आएं वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उन चंद पलों में, उन कुछ मिनटों में आप लोगों के दिलों पर कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। तो दोस्तों आज का ये सफ़र बस इतना ही, मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। अपना ख्याल रखिए, अपनों का साथ निभाइए, सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। मुझे दीजिए अनुमति, छोड़ जाती हूँ आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं हूँ आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओं, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
2: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
3: जी, तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
3: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देश दीप दास।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
2: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
2: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए ना कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
3: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
2: जी।
3: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
2: अजीत जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
3: जी, आपको बिल्कुल याद है। पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
2: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
3: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली विमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने की शुरुआत कहाँ से होती है।
2: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है
3: जी।
2: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
3: जी जी, नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
2: बिल्कुल। फिर होता ये है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियाँ यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
3: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
2: बिल्कुल।
3: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
2: जी अजीत जी, फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
3: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
2: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ
3: जी।
2: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
3: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
2: जी
3: समुद्र के पानी के खारा होने का।
2: बताइए।
3: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
2: जी,
3: जो पानी में नमक मिलाते हैं। यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है
2: जी। ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है, वो ये है कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा, वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ।
3: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी, यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता है। तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है।
2: जी सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। तो श्रोताओं अब ये भी जानिए, श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
2: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
4: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. After having biscuits, what do you do with the wrapper? Is there a dustbin in your school? Do you know where it is?
3: The Smart Monkey. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Artist, Farhan Ali Naqvi. Recorded by Sangeet Kumar. Assistance in production, Jagabandhu Jana. Directed and produced by Ajit Horo. Dear listeners, if you want to give your feedback on our program, you are most welcome to contact us on our IVRS number 8800 440559. we may be contacted as well on our email address. Our email address is audio@ciet.nic.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: राग देसी।
1: राग रस पर से श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

राग देसी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी-कभी इसमें कोमल धैवत अर्थात कोमल ध का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके आरोह में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

राग देसी की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 होने को हैं और लीजिए वक्त हुआ है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का, जिसमें सुनेंगे आज आप अक्षय आदाब।

सारे बच्चे पेन ड्राइव से आए हैं। माजी करीब के एक तंजो मजाक के शायर नश्तर अमरोही हैं, उनकी एक गजल से चंद अशार मुलाहजा कीजिए। जनाब भूत लंगोटी भी छोड़ भागेगा जो देख ले बिना मेकअप के इन हसीनों को, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो कितनी दुश्वारी के बाद। नश्तर साहब ने तंजिया व मजाहिया उसलूब में किस तरह अरबाब नाज़ो अदा के हुस्न जमाल की कली खुली है, इस मौके पर बेसाख्ता गालिब का वो शेर याद आ जाता है, पूछ मत रुसवाइये अंदाज़े इस्तग़नाए हुस्न, दस्त मरहून हिना रुखसार रहने गाजा था। तंजो मजाह एक के एक और मोतबर व मुस्तनद शायर प्रोफेसर खालिद महमूद हैं, जो शायरी और नसर दोनों में तंजो मजाह के अदब तख्लीक करते हैं। उनकी एक नज्म है दर मधे आम, मुलाहजा कीजिए कि शाहे अवध से फोन पे कल मैंने बात की, इसमें ग्रामी शाह का अब्दुस सलाम है, पूछा कि लखनऊ में है, मैंने कहा कि हाँ, बोले कि ये बताइए कै दिन क़याम है, मैंने कहा कि आज ही आया हूँ या अखी, यूं तो खुलूस शाह में किसको कलाम है, लेकिन ये आने वाले से जाने का पूछना, क्या इसमें कोई राज है या कुछ पयाम है, बोले कि राज वाज तो कुछ भी नहीं है, बस संडे की शाम 5 बजे इज़्न आम है, मैं तुमको लेने वक्त पे पहुँचूंगा और तुम मिलना सड़क पे जो कि तुम्हारा मकाम है, मैंने कहा कि मैं भी तो बोले कि हाँ ज़रूर, ये क्यों समझ रहे हो कि इज़्न ताम है, होता अगर ताम तुम्हें कौन पूछता, इस फसल में बस आम ही गुठली के दाम है, तुमने तकल्लुफन भी जो इनकार कर दिया, गालिब का वो जवाब बज़हन आवाम है। खालिद महमूद साहब ने कसीदे के तर्ज पर तशबीब गुरेज से अपने कलाम को पुरलुत्फ बनाया है, रियायतों के इस्तेमाल से जहाँ मानी आबाद करने की सही की है। तंजो मजाह के इजहार की एक सूरत पेरोडी है। मुतअद्दद तंजो मजाह के शोरा ने क्लासिकी शोरा की ज़मीन में पेरोडियाँ कही हैं, शोरा के कलाम पर गिरह लगाए हैं। माजी करीब के एक शायर तालिब खुंद मेरी ने गालिब की ज़मीन में पेरोडी कही है, उनका इख्तसास ये है कि उन्होंने गालिब और कलाम गालिब को मरकज़ में रखकर मुतअद्दद पेरोडियाँ तख्लीक की हैं, सिन्फी और फ़नी एतबार से तख्लीकी नादिराकारी का मुजाहरा किया है। उनकी तंजिया व मजाहिया शायरी का एक मजमुआ सुखन के पर्दे में के उनवान से मंजर आम पर आ चुका है। तज़मीन बर गज़ल गालिब के उनवान से उनकी एक मुखम्मस है, उससे दो बंद मुलाहजा कीजिए। तेरी गली का कोई गदागर नहीं हूँ मैं, जासूस भी किसी का सरासर नहीं हूँ मैं, दरबा भी तेरे घर का मुकर्रर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, पीरी में कैसे जहरा जबीनों पे आए दिल, इस सिन में आशिकी के कहाँ गुल खिलाए दिल, कब तक दयार हुस्न के चक्कर लगाए दिल, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। गालिब की ज़मीन में पेरोडी तख्लीक करने वाले एक तंजो मजाह निगार का नाम टीएन राज है। दुर्गत, गालिब और दुर्गत उनके तंजिया व मजाहिया शेरी मजमूए हैं। टीएन राज का कमाल और इख्तिसास ये है कि उन्होंने गालिब और दुर्गत में दीवान गालिब की हर गज़ल की ज़मीन में तंजिया व मजाहिया गज़लें और नज़में तख्लीक की हैं। टीएन राज की तख्लीकी गुलकारी का एक नमूना मुलाहजा कीजिए। जब तरक्की पाई तो साथी हमारा जल गया, हमने उसका क्या बिगाड़ा था कि साला जल गया, आशिके जां सोज का क्या वैद जी से हो इलाज, नबस देखी थी जरा और हाथ उनका जल गया। बतौर नमूना मुश्ते अज खरवारे 21वीं सदी और माजी करीब की तंजिया व मजाहिया शायरी की एक झलक पेश की गई है। इस अहद में शायरी के साथ साथ नसर में भी तंजो मजाह के उम्दा नमूने देखने को मिलते हैं। यूसुफ नाजिम, मुश्तबा हुसैन, नुसरत जहीर, खालिद महमूद, परवेज़ यदुल्ला मेहदी, असद रजा जो अखबार में तंजिया व मजाहिया कॉलम लिखते थे, नुमाया नाम है। इस अहद में तंजिया मजाहिया शोरा की एक काबिल ज़िक्र तादाद है, अनस फैज़ी, इकबाल फिरदौसी, फ़याज़ फैज़ी, अंजुम फिरदौसी, जहाज़ दियोबंदी, आसिम पीरज़ादा वगैरह शोरा इस सिंफ को अपनी शनाख्त का हिस्सा समझाने पर इसरार करते हैं। जहाँ तक तंजिया मजाहिया अदब की मेयारबंदी की बात है तो यह एक पेचीदा मसला है।

0: छोड़ दे मेरा पीछा बद जाती,
1: वाह,
0: मरते दम तक नहीं बताऊंगा नींद क्यों रात भर नहीं आती।
1: वाह,
0: एक उल्लू ये बोला इंसान से, छोड़ दे मेरा पीछा बद जाती, मरते दम तक नहीं बताऊंगा।
1: बहुत हुआ।
0: और चार मिसरे पेश कर रहा हूँ,
1: अता कीजिए।
0: किस लिए हूँ मैं इतना परेशान,
2: आज
0: सबको बताना पड़ा है, उनके पीछे मैं जब से पड़ा हूँ मेरे पीछे जमाना पड़ा है। हूँ मैं इतना परेशान, आज सबको बताना पड़ा है, उनके पीछे मैं जब से पड़ा हूँ मेरे पीछे जमाना पड़ा है।
1: वाह वाह वाह।
0: एक नज्म है, ऐसा कोई कलाम हो तंजो मिजाह में, ऐसा कोई कलाम हो तंजो मिजाह में, अपना भी थोड़ा नाम हो तंजो मिजाह में।
2: बहुत अच्छा।
0: ऐसा कोई कलाम हो तंजो मिजाह में, अपना भी थोड़ा नाम हो तंजो। इलाहाबाद के अकबर नहीं है हम, फिर भी खुदाए पाक दे ऐसा हमें कलम।
1: वाह वाह।
0: आ जाए बूम सा मेरी गजलों में कुछ असर, ये सोच सोच कर किए मेरठ के भी सफर। वो कह कहे कलाम में फिर भी ना आए हैं, वो कह कहे कलाम में फिर भी ना आए हैं, जा जा के लखनऊ के ही माचिस जलाए हैं।
1: वाह, माचिस
0: आए हैं। जा जा के लखनऊ के ही माचिस जलाए हैं। और दुनियाए फन में ऐसा ही कुछ काम हो मेरा, दुनियाए फन में ऐसा ही कुछ काम हो मेरा, अहमक फपूंद वी की तरह नाम हो मेरा, और बेतुक मजाक ये नहीं है मेरी इल्तिजा, कर दे जरीफ जैसी जराफत मुझे अता।
1: वाह वाह।
0: बेतुक मजाक ये नहीं,
2: बहुत अच्छा है।
0: और जितने भी शेर कहने थे बोगस में कह चुका।
1: वाह वाह।
0: जितने भी शेर कहने थे बोगस में कह चुका, फिर भी गुमान ये है कि चौकस में कह चुका, रहता हूँ फिक्र शेर में पीकर सिगार में।
1: वाह।
0: हसरत है बन ही जाऊं दिलावर फिगार में।
1: वाह वाह।
0: रहता हूँ फिक्र शेर में पीकर सिगार में, हसरत है बन ही जाऊं दिलावर फिगार में, ये सोचता हूँ साजे जराफत को देखकर, अपना लू मैं भी हजरत शहबाज की डगर।
1: वाह वाह।
0: शेरो सुखन का एक सरापा बना के रख, शेरो सुखन का एक सरापा बना के रख, यूसुफ की तरह मुझको भी पापा बना के रख। जादू बयां में फिक्र में ऐसा कमाल हो, जैसे के आसमां पे मुनव्वर हिलाल हो।
1: मुनव्वर हिलाल।
0: जैसे के आसमां पे, ये सोच कर मिजाह की रुक जाए नाट राम, सागर में पीता रहता हूँ भर भर के सुबह शाम।
1: वाह वाह।
0: नाजिर की तरह जीतू सभी सामयी का दिल, आदिल की तरह ऐसी चलाऊं मैं साइकिल। नाजिर की तरह जीत की तरह ऐसी चलाऊं मैं साइकिल, छा छा के शेर मैं पढ़ूं यलगार की तरह, सोचों में तंज पारे हूँ असरार की तरह। शिकवा जबां पे है ये दिले बेकरार का, शिकवा जबां पे है ये दिले बेकरार का, डर है के बन न जाऊं मैं बाजिर बिहार का, डर है के बन न जाऊं मैं बाजिर बिहार का, और जीरो से हीरो बनने के निकले कोई तो राह,
1: जीरो से हीरो बनने,
0: जीरो से हीरो बनने के निकले कोई तो राह। जीरो से हीरो बनने के निकले कोई तो राह, दिल में ख्याल आ गया बस यूं ही ख्वाबखा, और कुछ इस तरह के तंज के तेवर दिखाऊं मैं,
1: कुछ इस तरह
0: दिखाऊं मैं, अलवी की तरह खूब तमाचे उड़ाऊं मैं।
1: वाह वाह।
0: कुछ इस तरह से तंज के तेवर दिखाऊं मैं, अलवी की तरह खूब तमाचे उड़ाऊं मैं, राजा करके हर एक मुशायरे में पढ़ूं शेर मोतबर, मोहम्मल कलाम पढ़ के ना हो जाऊं पॉपुलर।
1: वाह वाह।
0: हर एक मुशायरे में पढ़ूं शेर मोतबर, मोहम्मल कमाल नश्तर चलाऊं दिल पे गजल जब भी मैं पढ़ूं।
1: वाह
2: वाह।
0: निश्तर चलाऊं दिल पे गजल जब भी मैं पढूं, तेरी रजा जो हो तो रजी की तरह बनूं।
1: वाह वाह।
0: और तेरी रजा जो हो तो रजी की तरह बनूं, और दिलकश ख्याल अच्छी हजल अच्छा हो कलाम।
1: वाह वाह।
0: दिलकश ख्याल अच्छी हजल अच्छा हो कलाम। दिलकश ख्याल अच्छी हजल अच्छा हो कलाम, रुस्तम की शायरी को तो बस दूर से सलाम, और झंझट की झंझटी से रहूं दूर मैं सदा, दूर मैं सदा, गड़बड़ की गड़बड़ी से बचा ले मुझे खुदा। झंझट की झंझटी से रहूं दूर मैं सदा, गड़बड़ की गड़बड़ी से बचा ले मुझे खुदा, जलवा इनायतों का मुझे भी दिखा कभी, फेमस की तरह भारी ओ भरकम बना कभी।
1: फेमस की तरह भारी,
0: जलवा इनायतों का मुझे भी दिखा कभी, फेमस की तरह, शेरों में जान है न तरन्नुम है काम का, शेरों में जान है न तरन्नुम है काम का, उससे परे ही रखियो जो सुंदर है नाम का।
1: वाह।
0: उससे परे ही रखियो जो सुंदर है नाम का,
1: सुंदर है नाम का।
0: एक मैं के सोचता हूँ कि आए हुनर सभी,
1: वाह,
0: एक मैं के सोचता हूँ कि आए हुनर सभी, एक वो कलीम कहते हैं जिसको समर सभी। तो दिला मुशायरे अब तो मुझे नवाज, मुझको भी हो अता कोई उड़ता हुआ जहाज।
1: बहुत।
3: सामईन, अभी आप नवाए शायर के तहत सुन रहे थे जनाब इकबाल फिरदौसी से उनका मजाहिया कलाम।

तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्से अदब। तो इसी के साथ अपने मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 4 बजने को है आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं
2: अभिनव कुमार झा। नमस्कार श्रोताओं।
1: अभिनव, आज हम चर्चा करेंगे चीन के शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण की, जहां पुरुष कंपाउंड टीम कांस्य पदक के काफी करीब पहुंची लेकिन कड़े मुकाबले में उसे बाहर होना पड़ा। महिला कंपाउंड टीम भी क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी है। व्यक्तिगत दौर में जरूर भारतीय खिलाड़ी से उम्मीद की जा रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन करके भारत को पदक दिलाने में सफल रहेंगे। बात मुक्केबाजी की करें तो ताशकंद में चल रही अंडर 15 और अंडर 17 में प्रतियोगिता में भारतीय बॉक्सर अपने पंच का दम दिखा रहे हैं। इसके अलावा बात हम इस कार्यक्रम में करेंगे लंदन में चल रही वर्ल्ड टेबल टेनिस की, जहां भारत की पुरुष महिला टीमें ग्रुप दौर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही थी लेकिन नॉकआउट दौर में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा। राउंड 32 के मुकाबले दोनों वर्गों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। बात आईपीएल की होगी, जहां कल चेन्नई सुपर किंग ने दिल्ली कैपिटल को उसके घरेलू मैदान में 8 विकेट से पराजित कर दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन की पारी खेली। और जो आज मुकाबला खेला जाना है अभिनव, वो हैदराबाद और पंजाब के बीच है और ये मुकाबला भी काफी रोमांचक होने की संभावना है। बात अंडर 17 महिला एएफसी फुटबॉल की भी करेंगे, जहां भारतीय टीम को चीन में चल रहे टूर्नामेंट में जापान के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा है। अंडर 17 टीम पुरुष को भी आज सऊदी अरब के जेदा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेलना है। ये मुकाबला रात 9:30 बजे से खेला जाएगा और

उम्मीद है कि भारतीय टीम अपने तीन टीमों के ग्रुप में अच्छा प्रदर्शन करके अंडर 17 फीफा विश्व कप के लिए अपनी दस्तक देगी। बैडमिंटन से भी अच्छी खबर है कि युवा शटलर उन्नति हुड्डा शीर्ष 20 में पहुंच गई हैं, और खबर इसलिए अच्छी है क्योंकि साइना नेहवाल, पीवी संधु, सरी की जो भारतीय स्टार शटलर हैं, उन्होंने पहले ये शीर्ष 20 रैंकिंग, जो एकल रैंकिंग है, उसमें जगह बनाई थी, और अब उन्नति हुड्डा उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात मिस्र में चल रहे विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप की भी होगी, जहां भारत के यश ने रजत पदक हासिल कर लिया है। तो अभिनव, सबसे पहले बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण की। शंघाई में चल रहा है, भारतीय टीम ने आज पुरुष कंपाउंड वर्ग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में अमेरिका से हार मिली और उसके बाद कड़े मुकाबले में उसे शूट ऑफ में हार का सामना करना पड़ा और कांस्य पदक के बेहद करीब पहुंचकर भारतीय टीम पदक हासिल नहीं कर सकी। बहरहाल, क्या है ये रिपोर्ट, आइए पेश है ये खास रिपोर्ट। चीन के शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारत की पुरुष कंपाउंड टीम पदक की दहलीज तक पहुंची, लेकिन चीन के खिलाफ शूट ऑफ तक चले बेहद कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एक समान 234-234 के स्कोर के साथ शूट ऑफ का सहारा लिया गया। इससे पहले भारतीय टीम को सेमीफाइनल में अमेरिका के खिलाफ एक अंक के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। स्कोर रहा 235-234। भारतीय पुरुष टीम में ओजस देवताले, साहिल जाधव और कुशल दलाल शामिल थे। कंपाउंड पुरुष टीम को तीसरी वैधता मिली थी, पहले राउंड में बाई मिला, दूसरे में जर्मनी को 238-230 से हराया, क्वार्टर फाइनल में चीन ताइपे को 233-231 से हराया, सेमीफाइनल में सातवीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की टीम से 235-234 से हार गए। कांस्य पदक के लिए चीन से मुकाबला हुआ। पांच सीरीज के बाद स्कोर 234-234 था, फिर मुकाबला शूट ऑफ तक पहुंचा, जहां दोनों देशों के तीनों तीरंदाजों ने 10-10 अंक बनाए, लेकिन चीनी तीरंदाजों के निशाने बुलाइव के ज्यादा नजदीक थे। तुर्की और अमेरिका की टीम फाइनल में पहुंच गई है। महिला कंपाउंडिंग ने पिछले माह मैक्सिको में

0: को 8वीं, कुशल दलाल को 18वीं और अभिषेक वर्मा को 25वीं सीडिंग मिली है। पहले राउंड में भारत के चारों तीरंदाजों को बाई मिला है। दूसरे राउंड में ओजस और साहिल यादव फिर से बाई हासिल करने में सफल रहे हैं। सेकंड राउंड में अभिषेक ने स्लोवाकिया के अल्जाज मतीजा को शूट आउट में 147-147 से हराया, जबकि कुशल ने तुर्की के एरन किरसा को 148 के मुकाबले 146 से हराया। राउंड थ्री में अब अभिषेक के सामने भारत के ही साहिल यादव, जबकि ओजस देवताले के सामने एस्टोनिया के रोबिन जातमा होंगे। कंपाउंड महिला टीम की बात करें तो अदिति स्वामी को 13वीं वरीयता मिली है, प्रगति को 19वीं, ज्योति सुरेखा को 21वीं, मधुरा दामानगेनकर को 33वीं वरीयता मिली है। पहले राउंड में भारत की चारों महिला तीरंदाजों को बाई मिला है। सेकंड राउंड में मधुरा चीन की वांग युई को 148-147 से हराने में सफल रही। ज्योति ने कजाकिस्तान की डायना यूनुसोवा को 150-145 से हराया। अदिति ने ग्रेट ब्रिटेन की इजाबेल को 147-143 से पराजित किया। प्रगति ने सिंगापुर की ओंग ज्यूली को 143-142 से मात दी। तीसरे राउंड में मधुरा के सामने शेषवरीय यूएसए की एलेक्सिस रोइज होंगी, ज्योति के सामने एस्टोनिया की मेरी मिरिता, जबकि अदिति के सामने कजाकिस्तानी की विक्टोरिया लियोन होंगी। प्रगति अपना मुकाबला तुर्की की चकमक के खिलाफ खेलेंगी। रिकर्व क्वालिफिकेशन की बात करें तो धीरज को 7वीं वरीयता मिली, धरनदीप को 29वीं, यशदीप संजय भोगे को 54वीं और रतानु दास को 67वीं वरीयता मिली है। महिला रिकर्व में अंकिता भगत को 10वीं, कुमकुम अनिल को 11वीं, सिमरनजीत को 15वीं और दीपिका को 14वीं वरीयता मिली है। पुरुष टीम को 8वीं वरीयता मिली है, जिसमें यशदीप, तरुणदीप और धीरज शामिल है। महिला टीम में भारत को 4थी वरीयता मिली है, जिसमें अंकिता भगत, दीपिका और कुमकुम शामिल है। मुश्रित टीम 6थे वरीयता हासिल करने में सफल रही है, इसमें धीरज और अंकिता हैं। एलिमिनेशन राउंड शुरू हो चुके हैं। व्यक्तिगत में तरुणदीप ने उज्बेकिस्तान के तीरंदाज को 6-2 से पराजित किया। अतानु दास को बांग्लादेश के मोहम्मद मिशाद ने पराजित किया। यशदीप ने स्पेन के प्रतिद्वंदी को पहले राउंड में हराया। धीरज को पहले दो राउंड में बाई मिली है। दूसरे राउंड में तरुणदीप का मुकाबला सऊदी के अब्दुल्ला से होगा। यशदीप के सामने तुर्की के मेटा गोजेज की मुश्किल चुनौती होगी, जो कि टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन रहे हैं। महिला रिकर्व व्यक्तिगत मुकाबलों की बात करें तो अंकिता, कुमकुम, दीपिका, सिमरनजीत को पहले राउंड में बाई मिला है। अब बात पुरुष टीम की, पहले राउंड में बाई मिला है, दूसरे में बांग्लादेश से खेलना है। महिला टीम को पहले राउंड में उज्बेकिस्तान से खेलना होगा। भारत को 4थी जबकि उज्बेकिस्तान की 13वीं वरीयता है। मिश्रित टीम को 6थी वरीयता है, पहले राउंड में बाई मिला है। सिंगापुर और ब्राजील से मुकाबला हो सकता है। भारतीय तीरंदाजों के प्रदर्शन पर हमने बात की साई के कोच लोकेश चंद्र से।
1: हमने ये जानना चाहा कि आज कंपाउंड टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, पदक की दहलीज तक पहुंची, लेकिन पराजित हो गई बेहद कड़े मुकाबले में, शूट ऑफ में चीन से और अमेरिका के खिलाफ भी एक अंक के अंतर से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। तो सर, अगर पुरुष टीम के प्रदर्शन की बात करें तो पदक के काफी नजदीक आके चूक गई, क्या कहेंगे?
2: मैं कह सकता हूँ कि पदक के बहुत क्लोज थे और जो सेमीफाइनल या फाइनल्स होते हैं बहुत क्लोज मुकाबले होते हैं और इस बार भी वैसे ही देखने को मिला। पहले हम अमेरिका से हारे, वो एक पॉइंट का मार्जिन था, एंड देन फिर होम कंट्री जो चाइना थी उसके अगेंस्ट हमने ब्रॉन्ज मेडल लूज किया, वो भी टाई शॉट में जाकर किया। तो इट्स अ डिसअपॉइंटिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। वो तो खेल में होता है कि कभी हम हारते हैं और कभी जीतते हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हारते तो कभी नहीं है, कभी सीखते हैं और कभी जीतते हैं। तो एक नई टीम, एक युवा टीम थी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी बाहर थे इस समय, तो उसका एक इफेक्ट है। बाकी आने वाले वर्ल्ड कप हमारे और अच्छे होंगे, मेरा तो मानना है। ओवरऑल देखा जाए, कुल मिलाकर देखा जाए, ये सीजन अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है और जो बाकी अभी इंडिविजुअल मुकाबले हैं उसमें हमारे खिलाड़ी बने हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। व्यक्तिगत मुकाबलों में हमारे सारे खिलाड़ी इस समय टॉप प्लेइंग चार्ट में हैं, अवेलेबल हैं। कोई भी ऐसा खिलाड़ी बाहर नहीं हुआ है कि मैं कहूंगी कोई भी रेस से बाहर है। और आर्चरी में क्या है कि ये आपका डे होता है, जिस दिन आपके तीर चलते हैं, जिस दिन आपका बहुत अच्छा फैक्टर बैठता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्म, जैसे सचिन की जिस दिन फॉर्म होती है तो उसके लिए 200 भी कुछ नहीं होता। तो अगर किसी खिलाड़ी की फॉर्म कल बहुत अच्छी रही तो ऑब्वियसली आप परसों उसको आप फाइनल में देखेंगे।
0: विश्व तीरंदाजी कप के दूसरे चरण में 44 देशों के 320 से ज्यादा तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष एची नगोया में एशियाई खेल होने हैं, इसलिए भी एशियाई देशों की भागीदारी बढ़ी है। इन एशियाई देशों में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और सऊदी अरब शामिल हैं। यूनशन स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता में विजेता तीरंदाज मेक्सिको में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। बहरहाल अभी जिस तरह अभी कंपाउंड तीरंदाज और रिकर्व में अच्छा कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आगे शायद बेहतर करके भारत को पदक दिलाने में सफल रहेंगे।

0: अब बात करते हैं तीरंदाजी के बाद बॉक्सिंग की, और ताशकंद में प्रतियोगिता चल रही है जहां भारत के अंडर 15 और अंडर 17 के मुक्केबाज अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुके हैं। बरल, क्या अभिनव क्या बताने चाहेंगे इस बारे में?
1: ताशकंद में चल रहे एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 15 और अंडर 17 में आज अंडर 15 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। भारतीय दृष्टिकोण से अगर आज के क्वार्टर फाइनल्स मुकाबलों पर नजर डालें तो 5 भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। 30 से 33 किलोग्राम भार वर्ग में यश कुमार पहुंचे थे, जिन्होंने तजाकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। 35 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित पुथीना ने मंगोलिया के खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दी। सास्था वसंत अशोक 37 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, जिनका मुकाबला यूएई के खिलाड़ी के साथ था, जहां दूसरे राउंड के समापन से पहले ही रेफरी ने मैच रोका और आरएससी के तहत भारतीय खिलाड़ी के जीत की घोषणा की। नितिन ने भी 40 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाफ आरएससी के जरिए जीत दर्ज की और समीर बोहरा ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत के पांच खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे और पांचों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यहां से कितने खिलाड़ी अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हैं और भारत को पदक दिलाते हैं। अब बात करते हैं कल शाम खेले गए मुकाबलों की। कल शाम ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दौरान भारतीय मुक्केबाजों ने रिंग में अपनी आक्रामकता और तकनीकी कौशल का जबरदस्त संगम पेश किया। भारतीय दृष्टिकोण से शाम का सत्र बेहद सफल रहा, जहां मुक्केबाजों ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। शाम के सत्र में अंडर 17 वर्ग में निवेश पाल ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के अपने दूसरे मुकाबले में कजाकिस्तान के मुक्केबाज के खिलाफ गजब का नियंत्रण दिखाया। उन्होंने अपनी लंबी रीच का फायदा उठाते हुए सटीक जेब्स लगाए और सर्वसम्मति से 5-0 से जीत अपने नाम की। अंडर 17 वर्ग में ही लक्ष्य फोगाट ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के खिलाड़ी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। रेफरी ने उनकी आक्रामकता को देखते हुए पहले ही राउंड में मुकाबला रोककर उन्हें अबेंडॉनमेंट के जरिए विजेता घोषित कर दिया। रणवीर ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी ताइपे के मुक्केबाज के खिलाफ इतनी मजबूत पकड़ बनाई कि विपक्षी खिलाड़ी ने मैच के बीच में ही हार मान ली, जो भारतीय मुक्केबाजों के बढ़ते खौफ को दर्शाता है। हालांकि शाम के सत्र में सभी परिणाम भारत के पक्ष में नहीं रहे। प्रदीप और जयदीप सिंह ने अपने अपने भार वर्ग में कड़ा संघर्ष किया, लेकिन कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उन्होंने 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। इन मुकाबलों में हार के बावजूद भारतीय मुक्केबाजों के जुझारूपन ने दर्शकों की वाहवाही लूटी। अब बात करें क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की, तो अंडर 17 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे।
0: जी हाँ, ये सिग्नेचर ट्रेन आईपीएल की है और आईपीएल में कल मुकाबला जो खेला गया वहां चेन्नई सुपर किंग ने दिल्ली कैपिटल को पराजित कर दिया। उसके मैदान में एक मुश्किल विकेट लग रही थी, लेकिन संजू सैमसन जिस लय में चल रहे हैं, जितनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि पिच कैसी हो, चुनौती कैसी हो, और चाहे प्रतिद्वंदी टीम का घरेलू मैदान हो, लेकिन उनका बल्ला नहीं रुकेगा और उन्होंने शानदार पारी खेलकर टीम को जिताने में मदद की। तो क्या कहेंगे अभिनव इस मुकाबले पर, चेन्नई और दिल्ली के मुकाबले पर?
1: जी बिल्कुल नवीन जी, कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के 48वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन सीएसके के गेंदबाजों, विशेषकर स्पिनर नूर अहमद और अकील हुसैन की कसी हुई गेंदबाजी के सामने दिल्ली का मध्यक्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया और टीम ने 69 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए। अंत में समीर रिजवी, जिन्होंने 40 रन की नाबाद पारी खेली, और ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने 38 रन बनाए, उन दोनों के बीच हुए 65 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी और आशुतोष शर्मा के कैमियो की बदौलत दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 155 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। लेकिन जवाब में 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत धीमी रही और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला और अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए मात्र 52 गेंदों में 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 87 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने कार्तिक शर्मा के साथ शानदार साथ मिला, जिन्होंने

41 रन बनाए और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 114 रनों की नाबाद साझेदारी कर सीएसके को 17.3 ओवर में ही जीत दिला दी। इस जीत के साथ चेन्नई

0: No sikiliza zi mema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia.
1: प्रोटीन में नहीं लेंगे मात्रा में जितनी हमारा शरीर को चाहिए, तो वो हम कितना भी हम कुछ खाते रहेंगे विटामिन डी और कैल्शियम, तब तक हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी बोन का जो स्ट्रक्चर होता है अगर देखा जाए तो उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और खासतौर से हमारे इंडियन कल्चर में जो है प्रोटीन बहुत कम खाया जाता है
2: जी।
1: क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, पर जो वेजिटेरियन होने के वजह से तो वैसे भी उनके डाइट में जो है प्रोटीन नहीं होता
2: जी।
1: तो इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि जितना आपका वजन है उतना ही ग्राम प्रोटीन आपका रिक्वायरमेंट है डेली का, और साथ साथ में अपना विटामिन डी और कैल्शियम रखें, तो ये चीजों पे हम लोग काबू पा सकते हैं
2: जी। ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो आमतौर पर विटामिन डी कैल्शियम इस तरह के ही नाम हम सुनते हैं, प्रोटीन कैसे जुड़ता है? प्रोटीन ज्यादातर टिश्यूज के लिए माना जाता है, तो कैसे ये हमारी हड्डियों को सुरक्षित रखता है?
1: इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम अपना घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कॉलम खड़ा करते हैं, तो कॉलम जब खड़ा होता है उसमें

0: सबसे जरूरी चीज होती है, पहले होते हैं सरिया होता है जिसे स्टील कहते हैं, उसको बांध करके उसको सीधा खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर हम उसमें सीमेंट, गिट्टी या उसको हम कहें कि गारा जो होता है उसके अंदर भरते हैं। तो जो सरिया है वो हमारा प्रोटीन पार्ट है, और जो उसके अंदर हम गारा भर रहे हैं, जो उसके अंदर सीमेंट डाल रहे हैं, वो हमारा कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब चीजें होती हैं। तो जब हमारा जब सरिया ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम उसमें कितनी भी उसमें डालते रहेंगे तो वो हड्डी में वो बात नहीं आएगी, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो इसलिए हमको इस चीज पे भी जोर देना चाहिए कि हमारी अच्छी प्रोटीन डाइट जाए तो वो जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है बोन का वो स्ट्रेंथ पकड़े।
1: और ऐसे में जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं वो कितने कारगर होते हैं?
0: सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं ऐसा मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा, बट जरूरी चीज है क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि उनकी डाइट में उतना प्रोटीन नहीं हो पाता, तो वो अपना सप्लीमेंट्स के रूप में बहुत सारे आजकल मार्केट में प्रोटीन्स मिलते हैं, तो अपने जिन भी डॉक्टर से मिलते हैं उनके परामर्श से वो अपना प्रोटीन को चूज करके और वो अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बुजुर्ग जितने सक्रिय रहेंगे उनकी हड्डियां उतनी मजबूत रहेंगी, लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस अवस्था है तो हड्डियां भुरभुरी हैं, तो ये भी डर रहता है कि एक्टिविटीज की वजह से कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, तो बहुत ही डिलेमा वाली ये सिचुएशन हो जाती है। ऐसे में किस तरह से बुजुर्ग एक्टिव भी रहें और चोट से भी बचे रहें?
0: देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि जितना ज्यादा बोन्स को यूज करते हैं, अपने जॉइंट्स को यूज करते हैं, तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली हमारी हड्डी के अंदर जाता है। जब हम जो भी कैल्शियम खाएंगे वो हमारी हड्डियों में पहुंचता है। हम जितना हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगी, मतलब कि जितना ज्यादा हमारी कम चलना फिरना, जितनी कम एक्टिविटी होगी, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों में से बाहर आ जाता है। तो ये तो बहुत जरूरी बात है कि हम जितने भी बुजुर्ग हैं या उस स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उनका कम से कम इतना तो मूवमेंट होना चाहिए कि बैठे बैठे कुछ व्यायाम है, या फिर उनको चलना है, जिसे वॉक करना कहते हैं हम, कि सुबह शाम थोड़ा थोड़ा वॉक करें, तो वो जरूरी है। जो उनकी उम्र के हिसाब से जो उनको सूट करते हैं वो भी अपने वो डॉक्टर के परामर्श से पूछ सकते हैं उनसे कि उनको क्या क्या व्यायाम वो आराम से कर सकते हैं, जिसमें वो बैठ के भी कर सकते हैं, जिसमें वो चल के भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो हमारे घुटने होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो क्योंकि वो चलेंगे तो एक दूसरी बात हो जाती है कि इधर तो हम उनको चलने के लिए कहते हैं, इधर उनके घुटने दुखते हैं। तो कुछ इस तरह के व्यायाम होते हैं जो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें वो अपने जोड़ों को, जैसे साइकिल चलाना, तो उसमें क्या होता है कि घुटने के ऊपर वजन नहीं आता पर उनकी एक्सरसाइज हो रही है, कि मसल्स जो है वो ताकत पकड़ती है। या फिर कुछ इस तरह से व्यायाम होते हैं जैसे अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको बैठ करके सिखा सकते हैं, तो उनके परामर्श से भी वो बैठ करके अपने व्यायाम कर सकते हैं।
1: यहाँ घुटनों का जिक्र आया है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अर्थराइटिस अक्सर हम सुनते हैं, गठिया का रोग, ये कितनी तरह का होता है, आमतौर पर किस एज ग्रुप में होता है?
0: गठिया जो है बहुत कॉमनली हमारे देश में बहुत कॉमन है, और ज्यादा कॉमनली ये लेडीज में होता है, लड़कों में या मेल्स में बहुत कम मिलेगा। और इसकी जो उम्र है वो किसी की कोई फिक्स नहीं है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है और लेडीज में एल्डर स्टेजेस में भी काफी कॉमन है। तो इसका कॉमन सिम्टम्स रहते हैं वो होता है हमारे जोड़ों का दुखना, उनमें सूजन आना और उनके अंदर में जकड़न रहना, और खास तौर से वो भी जब सुबह सो करके उठते हैं या आराम कर लेते हैं तो शरीर में सूजन आ जाना, सारे जोड़ों का दुखना। बट ये है कि अब इनको भी हम अपने डॉक्टर के परामर्श से और कुछ टेस्ट से इसका हम इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और इससे हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि भाई ये गठिया ही है या कुछ और तकलीफ तो नहीं है।
1: और ये दवाइयों से ठीक हो जाता है गठिया?
0: गठिया जो है वो दो तरीके से होती है, उसमें कुछ हम लोग सीरो पॉजिटिव बोलते हैं, यानी आपने खून का टेस्ट कराया और उसके अंदर में वो गठिया पॉजिटिव आ जाता है, और एक होता है सीरो नेगेटिव, जिसमें हम खून को टेस्ट करते हैं पर उसमें आपके लक्षण आपके शरीर में गठिया वाले होते हैं पर वो उसमें आपके खून में पॉजिटिव नहीं आता है। पर उन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि जिनको पॉजिटिव आता है उन लोगों को जिंदगी भर दवा खानी होती है, उसी तरीके से उन लोगों को ध्यान रखना होता है कि हम अपनी दवा टाइम से खाएं और अपने डॉक्टर से परामर्श करके खाएं और रेगुलरली खाते रहें तो उनका जीवन स्वस्थ रहता है। बट जो अपनी मर्जी से खाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है बीच में, क्योंकि इस तरह की बीमारियां जो होती हैं उन लोग परेशान हो जाते हैं कि हम दवा कब तक खाएंगे, तो उससे क्या होता है कि वो बीच में दवा छोड़ देते हैं, जब थोड़े दिन वो ठीक हो जाते हैं तो पर वो बीमारी फिर बढ़ के आती है।
1: घुटने से ही जुड़ा हुआ अगला मेरा प्रश्न है, नी रिप्लेसमेंट की कई बार जो है वो हालत हो जाती है पेशेंट्स की, तो अगर घुटने बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं, पेशेंट बहुत दर्द में है और या किसी चोट की वजह से, तो क्या नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र विकल्प है या ये स्थिति भी दवाइयों से और एक्सरसाइज से सुधर सकती है?
0: देखिए, जब हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम एक टर्म यूज करते हैं जो बेसिकली जो यूज होता है वो वृद्धावस्था में जब हमारे घुटने घिस जाते हैं अंदर, हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ग्रीस खत्म हो जाती है, इसे बोलते हैं, लोग बोलते भी हैं, तो उसमें क्या हड्डी के कोने निकल जाते हैं, दोनों के बीच में मेनिस्कस होता है, एक वॉशर होता है जो हम दोनों हड्डियों के बीच में घिसाव ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है, वो फट जाता है, तो उसकी वजह से उनको दर्द बढ़ने लगता है। अब वो इसके चार ग्रेड होते हैं, तो शुरू के जो ग्रेड्स होते हैं उनमें इतना आपको दर्द नहीं होता,

0: और छोटे मोटे आप इलाज कर लेते हैं तो उससे आपको आराम मिल जाता है, पर जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और घिसाव बढ़ता चला जाता है तो वो दर्द नहीं जाता। तो सर्जिकल पार्ट या हम इसको नी रिप्लेसमेंट का पार्ट जब आता है, जब आपके सारे, जब मरीज को इतना दर्द हो कि वो किसी व्यायाम से, आपके आराम करने से, कुछ पेन की दवा खाने से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, तब हम उनको कहते हैं कि भाई आप रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं।
1: स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी जब होती है तो उसमें लिगामेंट टियर, हम अक्सर ये नाम सुनते हैं और बहुत लोग जो है वो बताते भी हैं, तो इसकी रिकवरी क्या दवाइयों से और खान पान से संभव है, या लिगामेंट अगर एक बार टियर हो चुके हैं तब उसके बाद जिंदगी भर वो दर्द जो है उसको सहना पड़ेगा पेशेंट को?
0: देखिए, लिगामेंट इंजरीज कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरीज में आता है, जिसमें हमारे आजकल तो आप सब देखते हैं कि स्पोर्ट्स काफी बढ़ गया है, हर बच्चा आजकल काफी ज्यादा एक्टिव है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स को ले लें, चाहे हमारा क्रिकेट है, चाहे हमारा फुटबॉल है, बैडमिंटन है, तो ये बहुत स्ट्रेनुअस स्पोर्ट्स हैं जिनमें आपको चोट लगने के संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और जब एक बार इंजरी हो जाती है तो अब वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की इंजरी हुई, जिसको हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके खास तौर से MRI में क्लियर कर लेते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा उसके अंदर में लिगामेंट ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल टूट गया है, तो उसको हम संभव नहीं कि हम उसको दवा से ठीक कर सकें या व्यायाम से ठीक कर सकें, तो उसके लिए तो हमको उसको ऑपरेट करके उसको नया बनाना पड़ता है या उसको जोड़ना पड़ता है। और अगर छोटी मोटी कोई इंजरी होती है जिसमें डॉक्टर ही अपने परामर्श से उसको देख के बता सकता है या गाइड कर सकता है कि उसको किस तरह की इंजरी है, तो हाँ, बहुत सारी छोटी मोटी चोट हम दवा से, कुछ व्यायाम से और कुछ आराम से उसको ठीक कर सकते हैं।
1: एक शब्द जब हम सुनते हैं फ्रैक्चर तो बहुत डर लगता है इस शब्द से, शरीर में कहीं भी, हड्डी के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि किसी पेशेंट को बताया गया कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है लेकिन प्लास्टर की जरूरत नहीं है और कुछ समय जो है वो शरीर के उस हिस्से को आप सीधा रखें या ध्यान रखें तो वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कैसे होता है कि हड्डी में चोट लगी लेकिन अपने आप वो हील हो गई?
0: शरीर में कोई भी चोट लगेगी तो हमारी नेचर ने, भगवान ने हमारे शरीर को इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि वो आज चोट लगी और उसके अगले दिन से ही वो, नेक्स्ट टाइम से ही उसके कुछ मिनटों में ही वो रिकवरी भी स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर में। पर हड्डी जुड़ने का जो प्रोसेस होता है वो कुछ हफ्तों से और कुछ महीनों तक का होता है। आपका डिपेंड करता है कि आपका फ्रैक्चर हेयरलाइन है या उससे ज्यादा बढ़ के है। अगर कुछ हेयरलाइन टाइप की इंजरी है और पैर की चोट है तो वो ज्यादा टाइम लेती है बजाय के हाथ की चोट के, क्योंकि आपको सारे शरीर का वजन पैर पे देना होता है, उसकी रिकवरी में टाइम लगता है। तो कम से कम हम अगर हेयरलाइन भी कोई क्रैक मानते हैं या फ्रैक्चर मानते हैं तो उसको कम से कम 1.5 महीना कम से कम चाहिए ही चाहिए होता है उसकी रिकवरी के लिए। हाँ, ये भी है कि अगर कोई फ्रैक्चर है तो हमको उसको प्लास्टर लगवाना चाहिए।
1: प्लास्टर क्यों हमें लगवाना चाहिए, वो कैसे हेल्प करता है?
0: प्लास्टर जो है वो प्लास्टर जोड़ने में हेल्प नहीं करता, क्योंकि प्लास्टर का काम जोड़ना नहीं है। प्लास्टर का काम सिर्फ उस अंग को या उस जिस भी जगह पे फ्रैक्चर हुआ है उसको हिलने से रोकना होता है। जितना ज्यादा उस पार्ट पे जिसमें फ्रैक्चर हुआ है अगर वो हिलता रहेगा, उसकी जो रिकवरी है वो स्लो हो जाएगी। तो जब स्लो हो जाएगी तो एक तो दर्द बढ़ जाएगा आपका और दूसरा आपकी जो हीलिंग टाइम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी कोई फ्रैक्चर हो, चाहे वो क्रैक फ्रैक्चर ही है, उसको हम प्लास्टर करें।
1: पैरों का जिक्र किया आपने, मैं जानना चाहूंगी, कुछ बच्चों को हमने देखा है जो जन्मजात ही थोड़ा टेढ़े होते हैं पांव उनके, और बच्चों को बहुत स्ट्रगल इस दौरान करना पड़ता है, सीधे खड़े नहीं हो पाते और आगे पूरा लाइफस्टाइल जो है वो उसी से जुड़ा होता है उनकी जिंदगी भी। ऐसा कैसे होता है कि कुछ बच्चे जो है पैदाइशी वो इस बीमारी के साथ आ रहे हैं, और कितने हमारे भारत में ऐसे चांसेस हैं कि ये ठीक हो जाता है?
0: इसमें दो बीमारियां आती हैं खास तौर से। एक तो होती है रिकेट्स, जिसमें हमारे माँ के पेट से ही कैल्शियम और विटामिन डी की कमी लेकर के बच्चा पैदा होता है। तो जब वो पैदा हो जाता है तब तक तो नहीं पता चलता, जैसे जैसे वो अपनी और उम्र लेता है तब वो उसके पैरों में गोलाई आनी शुरू होती है, पैर टेढ़े दिखने शुरू होते हैं। तब उसका उपचार भी बहुत आसान सी है, उसमें कुछ हमको उसके कुछ खून की जांच करनी होती है ये देखने के लिए कि उसको कितना विटामिन डी कमी है या उसका कैल्शियम कितना कम है। कुछ एक्सरेज हैं, उनसे देख करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बीमारी रिकेट्स है और इसको हम डॉक्टर के परामर्श से, इनके साथ में कुछ एक्सरसाइजेज हैं और कुछ अच्छी डाइट है और कैल्शियम विटामिन डी खाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं और इनको कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आती। दूसरी तकलीफ होती है जिसे हम क्लब फुट बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारे पैर की जो हड्डियां होती हैं या जोड़ होते हैं वो माँ के पेट से ही इस तरह से बनावट होती है उनकी कि उनको हम बहुत अच्छे से जो ट्रीटमेंट करेंगे तो ही उसका आगे जिंदगी में आराम मिलता है, नहीं तो ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज उनको आने वाले स्टेजेस में, शुरू के टाइम जब वो पैदा होते हैं तो उनको पैदाइशी 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसको प्लास्टर देना शुरू करते हैं। उसका जो कोर्स रहता है वो अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो वो प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, नहीं तो उनको अलग अलग पड़ाव पे अपनी उम्र में कई सर्जरीज करनी होती हैं तो वो भी रिकवर कर जाते हैं।
1: यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि जब शरीर में विटामिन्स की कमी है, कैल्शियम नहीं है, तो हड्डी के रोग होना शुरू हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कई बार सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, विटामिन डी सैशे हो या फिर कैल्शियम हो। क्या ऐसा भी होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा हमने इनटेक

0: या है, तो ये भी नुकसान करता है।
1: इसमें कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन डी को हमको ऐसे देखना है कि जब तक विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं है या उसकी
0: जी
1: कमी है तो हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो हम कोई भी कैल्शियम खाएंगे खाने में जा रहा है, चाहे वो हम उसको डाइटरी सप्लीमेंट यानी गोली के रूप में ले रहे हैं कैल्शियम को, तो जो हमारे पेट में जाएगा वो वहां से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जो हमारे
0: जी
1: खून में चला जाए। उसको हेल्प करता है विटामिन डी। और
0: जी
1: विटामिन डी जो है, जब भी स्टार्ट करें अपने डॉक्टर के परामर्श से और उसको टेस्ट करवा करके कि उसकी कितनी वैल्यूज आती हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाएंगे तो उसके नुकसान आते हैं शरीर में,
0: जी
1: तो वो आपके डॉक्टर बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उसको कितने डोज में खाना है। और कैल्शियम जो है, वो कैल्शियम के जो फॉर्मुलेशन हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे बच्चों के लिए अलग है, जवान लोगों के लिए अलग है,
0: जी
1: वृद्धावस्था के लिए अलग रहता है, या मेनोपॉजल वुमेन है उनके लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशन रहती हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं। पर कुछ कुछ फॉर्मुलेशन ऐसी भी होती हैं जिनको अगर हम बिना उसके डॉक्टर के परामर्श से खाते हैं तो उसमें कभी कभार किडनी के स्टोन्स बन जाते हैं, तो इसलिए उन लोगों को जिनको पहले से किडनी स्टोन्स रहते हैं तो वो अपने डॉक्टर के परामर्श से वो सारी फॉर्मुलेशन खरीदें या वो
0: जी
1: लें जिनसे किडनी स्टोन्स नहीं बनते। अगर वो बिना परामर्श के भी 2-4 महीने एक्स्ट्रा खाते रहते हैं तो उसे कोई नुकसान नहीं होता।
0: यहाँ मैं आपसे आहार के बारे में भी जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं जिन्हें हम अपने खाने में शामिल करें तो कैल्शियम और विटामिन डी हमें मिलता रहेगा?
1: देखिए, कोई भी फ्रूट्स कहते हैं या सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, वो हमारी सब शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इसलिए खास तौर पे मैं किसी एक सब्जी का या फल का नाम नहीं लूंगा कि यही ज्यादा खाना चाहिए। सब सब्जियों को और सब फलों को अपनी डाइट में अच्छे से उनको इंक्लूड करना चाहिए। और फिर से मैं एक बार इस महत्व को डालूंगा कि इसमें प्रोटीन की बहुत जरूरत है, तो अपने प्रोटीन को भी अपने इस खान पान में बढ़ाएं।
0: कैल्शियम से स्टोन बन सकता है, ये हमने सुना है बहुत बार, इसलिए अक्सर ये भी सुना है कि सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम लेना चाहिए, रात में सोते समय नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना सही है?
1: देखिए, इसमें वो नहीं है कि आजकल, फिर मैं आपसे ये बात कहूंगा कि फॉर्मुलेशंस बहुत सारे आ गए हैं
0: जी
1: जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खाने के साथ खा रहे हैं या कि खाने के बाद खा रहे हैं, पर हम ज्यादातर यही कहते हैं कि या तो दोपहर खाना खाने के बाद खाएं या रात के खाना खाने के बाद खाएं,
0: जी
1: इससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या फॉर्मुलेशन खा रहे हैं, तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर आपके डॉक्टर बता पाएंगे कि आपको कौन सा आपके शरीर के लिए सूट करता है।
0: जैसा कि कार्यक्रम में आपने जिक्र किया कि अगर हम किसी घर की बात करें तो उसकी जो फाउंडेशंस होती हैं उनका सही होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही हमारा पूरा शरीर हमारे हड्डियों के ढांचे पर टिका है, और ये ढांचा सही रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा। आज आपने हमें सही पोस्चर्स के बारे में बताया और साथ ही बहुत सारे ऐसे सवाल जो कई बार मन में होते हैं उनके जवाब हमें आपसे मिले। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत जरूरी बातें हमसे की हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
2: प्रीति बहन
3: जी,
2: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे सामान्य हड्डी एवं जोड़ों के रोग, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अहमद, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और इनसे बातचीत कर रही थी नीलम मलकानिया।
3: तो इसी के साथ हमारी जो घड़ी है वो इशारा कर रही है कार्यक्रम संपन्न होने का, तो कार्यक्रम ग्राम संसार यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएम के

0: के साथ गठबंधन में हैं। इस पार्टी के दो विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउन ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: हाजिर हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति
1: और मैं हूं लोकेंद्र।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और शुरुआत करते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से एक योजना है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर।
0: जी
1: देखिए प्रीति बहन, इस योजना, ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है देश में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। और क्या है ये योजना, हम अपने भाइयों को भी बता दें प्रीति बहन। यह योजना फल, सब्जी, फूल, मसाले, औषधि पौधे और बागवानी फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
0: और इसका अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भाई इसके मुख्य उद्देश्य है कि बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़े, आधुनिक तकनीक और उन्नत खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सुविधा विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इन सबसे क्या होगा कि किसानों की आय बढ़ेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा ध्येय है हमारी सरकार का, और जो निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है।
1: बिल्कुल पृथ्वी, और इसके साथ साथ देखिए योजना के प्रमुख घटक भी हैं, हम वो भी बता देते हैं। NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसमें पूर्वोत्तर व हिमालय राज्यों के लिए है। और नेशनल बंबू मिशन, इसी में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये स्कीम है और इसके लाभ भी हैं, आप बता दीजिए।
0: लाभ अगर हम बात करें तो किसानों को सब्सिडी यानी कि अनुदान मिलता है। और पौधा रोपण, सिंचाई, ग्रीन हाउस, शेड, नेट आदि की सहायता मिलती है। और जैसे भंडारण है, प्रोसेसिंग है, इसके लिए आर्थिक मदद भी सरकार देती है। और नई तकनीक को सीखने के लिए जो शिक्षण है उसके लिए भी एक तरह से वो भी हमारे लिए लाभ ही है, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो पहले शिक्षण ले लें और उसके बाद अपनी जानकारी में इजाफा करके फिर उसको अपनी खेतीबाड़ी, किसानी या बागवानी में उसको उसका जिम्मेदार उसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल प्रीति बहन, इसका देखिए किसको लाभ मिलता है, कैसे मिलेगा, हम वो भी बता देते हैं। देखिए किसानों को इसमें लाभ मिलेगा और उसके किसान समूह जो एक समूह बना लेते हैं, हाँ, उसके अनुसार भी मिलेगा और स्वयं सहायता समूह भी बना के मिल सकता है और उद्यमियों को भी मिल सकता है। तो ये तो रही योजना। अब देखिए शाम का समय है, हमारे भाई किसान भाई बहन फ्री होकर इंतजार करते हैं हमारे कार्यक्रम का, तो क्योंकि इस कार्यक्रम में हम अपने भाइयों को सुनवाते हैं उपदेश। तो सबसे पहले आप किसको सुनवा रही हो?
0: हम सुनवा रहे हैं रुस्तम सागर को, उनसे सुनते हैं ये उपदेश। नहीं, ये उपदेश नहीं है, हम सुनवा रहे हैं उनको भजन, क्योंकि शाम का समय है, संध्या भजन से शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: प्रीति बहन,
1: जी
0: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये भजन, कलाकार थे रुस्तम सागर।
1: और आइए अब आपको जानकारी दिलवाते हैं समर वेजिटेबल फील्ड डे, ये जो खास दिन है उस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, जो कि डायरेक्टर हैं एवं कुलपति हैं IARI पूसा नई दिल्ली में। आइए जानते हैं ये जानकारी।
2: को नमस्कार किसान भाई बहनों और हमारा साथी इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स विद्यार्थी है। आज हमारा ये मीटिंग से एटलीस्ट दो किसान भाई बहनों को प्रेरित किया ये सब्जियों को ये बनाने के लिए, और FPO को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। एंड हमारा तो भारत का तो खाना बहुत नेचुरल है, एंड हमारा फूड सिस्टम अलग है, सभी देश अलग है, भारत अलग है। लेकिन जब भारत का भोजन अलग है तो सब्जी का, फ्रूट्स का बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भारत 100 इयर्स होगा 2047 में, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है जो सब्जियों का, फ्रूट्स का एंड फूल का जो ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा चावल का डिमांड है अभी से 2026 में, सो अगले 20 साल में हमारा चावल रिक्वायरमेंट है ज्यादा नहीं है, 80 मिलियन टन ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दान भी ज्यादा जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तीन गुना 300% ज्यादा कंट्री का रिक्वायरमेंट है सब्जी में। 340 जो मिलियन टन है अभी हॉर्टिकल्चर का हमारा रिक्वायरमेंट है, लगभग 1000 मिलियन टन का रिक्वायरमेंट है। तो अभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं न्यूट्रिशन काफी इम्पोर्टेंट है एंड काफी डिफिशियंसीज है, तो हम लोग सब्जी को, फूल को बढ़ाने में ये न्यूट्रिशन का नेशनल एजेंडा है, ये पूरा करना चाहिए। बाद में जब हम लोग का 1000 मिलियन टन रिक्वायरमेंट है तो क्या करना चाहिए? अकेले फॉर एग्जाम्पल पूसा संस्थान पूरा भारत में अलग अलग सब्जी है, अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग खाना पीना तरीका है, अलग अलग भौगोलिक टेम्परेचर्स है, हम केवल दिल्ली में इधर बैठ के पूरा देश का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अलग अलग स्टेट्स में जाना चाहिए। जो बीज हमारा आज बहुत अच्छा डिस्प्ले किया आपने, टमाटो, चेरी टमाटो, करेला एंड अलग अलग मस्क मिलन है, अलग अलग फ्रूट्स है, समर कैलीफ्लावर, सभी आप बहुत अच्छा से डिस्प्ले किया, लेकिन लोगों को पास पहुंचना है तो क्या प्लेटफॉर्म है हम लोग बनाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल हमारा पुणे हमारा रीजनल सेंटर है, हम टारगेट पुणे में सीड प्रोडक्शन का टारगेट करने से महाराष्ट्र से और तेलंगाना को टारगेट कर सकता है। अगर हमारा वेलिंगटन है ऊटी का पास में है तो केरला, तमिलनाडु को टारगेट कर सकता है। हमारा एक सेंटर बिहार में है, उधर ईस्टर्न पार्ट में कर सकता है। एक कलिम्पांग वेस्ट बंगाल पहाड़ में है तो उस रीजन में कवर कर सकता है। तो हम लोग ये सोचने के लिए समय है, हम लोग किसान भाई बहन है ना, एक संगठित हो ही करना है, नहीं तो भारत में एक समस्या है, मार्केटिंग का चैलेंज है। आपको जो पैसा मिलना चाहिए 30-40% भी नहीं मिलेगा, बीच में मिडिल मैन खा जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। ऐसे भी फार्मर का समस्या बहुत है। दूसरा है कभी भी खाद खरीद करना, कोई इनपुट खरीद करना है तो वो ऐसा बताएगा आपको चाहिए ये कंपाउंड है, ये भी खरीद करो बताएगा। इस तरफ का जो इनपुट खरीद करने में और बीज प्रोडक्शन करने में अकेले किसान मुश्किल होगा, संगठित होके FPO रूप में करना चाहिए, मार्केटिंग भी अच्छा करना चाहिए। सबसे बेस्ट पाइनएप्पल असम में होता है, तो कहाँ तक असम में के बंगाल तक पहुंचता है, लेकिन गुजरात में नहीं जाता, मुंबई में इतना बड़ा मार्केटिंग नहीं जाता। जाने के लिए क्या करना चाहिए? आप है ना 50 लोग मिलके करने से मार्केटिंग ट्रक बुक कर सकता है, 10 सुपरमार्केट से आज पाइनएप्पल डिमांड इस 15 दिन में क्या होगा आप मार्केटिंग कर सकता है। बीज बहुत मुख्य है, मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग साइंटिस्ट हमारे तरफ से नहीं है, किसान का नजर में रख के करना है। प्राइम मिनिस्टर सिंचाई योजना, पहले वाटरशेड प्रोग्राम होते थे, उसके बाद सिंचाई योजना है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी भारत रत्न अवार्डी हमारा पुराना निदेशक, किस खेत में एक फार्म पॉन्ड हो, किस खेत में एक बायोगैस प्लांट हो, एक खेत सुरक्षित है। लेकिन किस लिए बताया स्वामीनाथन साहब, ये बताया 40 साल पहले, लेकिन आज स्वामीनाथन साहब का जो मैसेज आज ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब भी यही है, पानी कहाँ जाएगा, अगर मेरा एक फार्म में एक कुआ बनाया, टिपिकल एरिड डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतपुर में 40% मूंगफली बढ़ाया, एक लाइफ सेविंग इरिगेशन। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब किसान पूछ रहे खेत में हमारा 3 एकड़ जमीन है, हमारा 3 एकड़ में हम कुआ बनाने के लिए हम तैयार है, लेकिन जब बारिश नॉर्मल है तो हमारा 10% एरिया खराब हो रहा है, हमारा लैंड एरिया कम हो रहा है ना। इसका मतलब है किसान देख रहे हैं एक एक इंच के लिए देख रहे हैं, तो इसलिए हमारा अनुसंधान होगा ये 10% फार्म पॉन्ड नहीं आना है, 5% में लेके आना। सो हम लोग सब्जियों में भी एक एक इंटेंसिव करेला प्रोडक्शन होगा, और थोड़ा ब्रीडिंग के साथ प्रॉपर एग्रोनॉमी होना चाहिए।

0: के साथ पानी का महत्वपूर्ण होना चाहिए, एक एक बिंदु से ज्यादा हम लोग ये करना है। एंड मल्च का मेन्यूरिंग का हमने जिक्र किया, हम लोग खाद डालने से खर्चा ज्यादा होगा। अगर म्यूरेटा पोटाश कास्टली फर्टिलाइजर है, कहाँ से आता है म्यूरेटा पोटाश? भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होता, इजराइल से, कनाडा से, रशिया से आता है। इतना से हम पेट्रोल डीजल खर्च करके इतने लेके आ रहे हैं, लेकिन जो गिरा हुआ पत्ता इज नथिंग बट म्यूरेटा पोटाश। जो केला है 1000 किलो पोटाशियम लेता है, लेकिन केवल 1000 में 50 किलो इकोनॉमिक यील्ड में रहता है, 95% ये पत्ता में, ये अवशेष में रहता है। अगर उसको मिट्टी में लेके आयो तो पूरा खर्चा सेव हो जाएगा। इस तरफ का थोड़ा सा संक्षिप्त में, ये एक सब्जेक्ट के रूप में हॉर्टिकल्चर काफी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। कम जगह में कम पानी मैनेज करके एक्सपोर्ट, जो अभी हम लोग इतना हैप्पी हैं, 60 बिलियन एग्री एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर 60 एक्सपोर्ट उसी पानी को, उसी का फर्टिलाइजर को, उसी भूमि को लेके, उसी का वातावरण लेके सब्जी में मरने से हम लोगों को 100 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेस और जो एक्सपोर्ट्स है बैलेंस करना चाहिए। एक बार मिट्टी जाने के बाद मिलेगा नहीं पानी, तो कभी कभी बारिश आ सकता है, एक बार मिट्टी निकलने के बाद फिर कुछ भी नहीं होगा। आज हम लोग काफी वेराइटीज कमर्शलाइज किया, करेला हमारा 160 हाइब्रिड्स वो डिस्प्ले किया, अलग अलग रीजन्स के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए काफी अच्छा डिस्प्ले किया। एंड सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। एक हमारा किसान आया, बीज अवेलेबल नहीं है। बीज अवेलेबल केवल पूसा संस्थान से नहीं होगा, सब हम लोग पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन करना चाहिए। एग्रीकल्चर भी एक बिजनेस रूप में जाना चाहिए, बिजनेस रूप में जाना चाहिए। प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन चाहिए, सब्जियां इस तरफ हाई वैल्यू क्रॉप होना चाहिए, इसकी तरफ वैल्यूएशन प्रोसेसिंग लिंक करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। देन ओनली किसान खेती हमारा भारत में खड़ा रहेगा। हम लोग गर्व से बताएंगे भारत ये कृषि संपन्न देश है, रहेगा, हमेशा रहेगा।
1: प्रीति बहन, अभी जानकारी सुन रहे थे हमारे किसान भाई बहन समर वेजिटेबल फील्ड डे, इसमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव, जो कि डायरेक्टर एवं कुलपति हैं IARI पूसा नई दिल्ली से, और इसमें सहयोग था विशाल और अंकित का।
2: तो आइए अब सुनवाते हैं सत्यदेव सागर से ये उपदेश।

0: तो अभी आप सुन रहे थे सत्यदेव सागर की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 हो चले हैं और ये समय होता है, हमारे श्रोता जानते हैं, गजल और कव्वाली के लिए समर्पित नगमों का। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं जगजीत सिंह साहब की इस गजल के संग।

इसी के साथ गजलों की इस महफिल को यहीं अंजाम देते हुए मैं दीप्ति आपसे इजाजत चाहूंगी। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में ढकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन

0: वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों का वेतन 20,000 से 23,000 रूपये से बढ़ाकर अब प्रति माह 38,100 रूपये हो गया है। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 784 केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21,000 रूपये से बढ़ाकर 35,420 रूपये प्रति माह कर दिया गया है। इस वृद्धि से शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय केवल शिक्षकों के लिए आर्थिक लाभ नहीं बल्कि शिक्षकों के समर्पण और कठिन परिश्रम का सम्मान है। अब समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के समान वेतन मिलेगा जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय से भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लू की कार्य योजना पर लगातार काम चल रहा है। वहीं सरकार ने पूरे शहर के लिए लू की कार्य योजना जारी की है जिसमें सरकार ने हर वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया है। इस योजना पर एक पुस्तिका भी जारी की गई है और दिल्ली में भीषण गर्मी से निपटने के लिए 13 जिलों के लिए 13 वाहन तैनात किए गए हैं। इन वाहनों द्वारा वाटर कूलर, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, ORS और टोपी और तौली जैसी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें भीषण गर्मी के दौरान चौराहों पर खड़े लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में अधिकारियों और बच्चों को पानी की कमी से बचाव के लिए जलपान अंतराल सहित व्यवस्थाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं।
1: दिल्ली सरकार बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है श्रमिक भाई बहनों को लेकर के जो गर्मी के दौरान बाहर काम करते हैं उनके लिए हमने 1 से 4 रेस्ट भी दिशा निर्देशित किया है और बच्चों को भी स्कूल में हमने पूरी तरीके से डिहाइड्रेशन के लिए वाटर बेल से लेकर के उस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्कूल अथॉरिटीज को बोला है। हॉस्पिटल्स में हीटवेव से रिलेटेड सारी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, एक्स्ट्रा बेडिंग की फैसिलिटी, इस सबका भी समाधान दिल्ली सरकार ने किया है।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने छात्रों से AI और ज्ञान आधारित परिवर्तन के युग में गुरुवाणी के ज्ञान का अनुसरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब किसी संस्थान का संकल्प राष्ट्र के साथ जुड़ा होता है तो उसकी उपलब्धियां राष्ट्र की उपलब्धियां बन जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मान सभी विद्यार्थियों के मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान उत्कृष्ट परंपरा के माध्यम से युवाओं में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना भी विकसित कर रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित विश्वविद्यालय के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह आकर्षक विदेशी नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी सहित वित्तीय लेनदेन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए दिशा निर्देश जारी किए। श्री प्रधान ने कहा कि ये समितियां विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विकेंद्रीकृत शासन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में SMC के गठन पर विशेष बल दिया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्कूली शिक्षा को मजबूत करने में SMC की अहम भूमिका है।
3: बच्चों की चौमुखी विकास के लिए, उनकी पढ़ाई, उनकी स्वास्थ्य, उनकी व्यवस्था, उनकी मेंटल हेल्थ, CWSN, इस सारा विषयों के ऊपर सरकार की दायित्व है व्यवस्था बनाना। लेकिन व्यवस्था की आगे जो हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, मेंटरिंग की आवश्यकता है, उसमें स्कूल मैनेज

0: मैनेजमेंट कमेटी की बहुत बड़ा भूमिका है। आने वाले दिनों में देश में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की एक संस्कृति बनानी पड़ेगी, इसको एक जन आंदोलन बनानी पड़ेगी।
1: इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नए दिशा निर्देशों से विद्यालय प्रबंधन समितियां SMC महज निगरानी करने वाली संस्थाओं से ऊपर उठकर एक वास्तविक विद्यालय समुदाय संचालन संस्था बन जाएंगी। श्री सूद ने कहा कि SMC अब बच्चों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थी कल्याण, डिजिटल प्रशासन और पारदर्शिता में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। दिल्ली सरकार IIT कानपुर से जुड़े एरावत रिसर्च फाउंडेशन ARF के साथ एक समझौता करेगी। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली की पर्यावरण नीतियों को भरोसेमंद डेटा और व्यवहारिक नतीजों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सुशासन के जरिए लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके और इस समझौते का उद्देश्य पर्यावरण विभाग और ARF के बीच एक सहयोगी ढांचा तैयार करना है। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये जानकारी दी।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: श्रीमती सुजाता ने बताया कि घरेलू LPG और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
3: जो घरेलू कुकिंग LPG सिलेंडर का प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है। जो आपने इंक्रीज की बात की वो सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के लिए हुई है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि डोमेस्टिक LPG सिलेंडर पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस में भी अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है।
1: इस बीच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज बकरवाला और नांगलोही में चल रहे अवैध LPG रिफिलिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने के लिए जमा किए गए 96 अवैध LPG सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को संसद में पेश करने को मंजूरी दिए जाने की सराहना की है। इससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम न्याय प्रक्रिया को नई गति देगा, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाएगा और गरीब तथा दूरदराज के याचिकाकर्ताओं के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज डॉक्टर RP नेत्र विज्ञान केंद्र में 40 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को AI से लैस स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके माध्यम से वो ध्वनि के जरिए अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे।
4: AI आधारित ये स्मार्ट चश्मे दृश्य जानकारी को बोली जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं, साथ ही ये वस्तुओं की पहचान करने, चेहरों को पहचानने, रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने और नेविगेशन में सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यह उपकरण दृष्टि बाधित व्यक्तियों को उनके दैनिक कार्यों को बिना किसी बाधा के करने में मदद करता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सामुदायिक नेत्र विज्ञान के प्रभारी डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि एम्स ने दिल्ली NCR के स्कूलों में पहले से चिन्हित कम दृष्टि वाले बच्चों को ऐसे लगभग 1700 AI सक्षम चश्मे वितरित करने की योजना बनाई है।
5: इस चश्मे में जो चीज दिखाई देनी चाहिए उसको सुनने में चेंज किया। जैसे चश्मा अगर किसी बच्चे ने लगाया हुआ है, ये कनेक्ट होता है स्मार्टफोन से और ये अपने आप बता देते कि आसपास सराउंडिंग में क्या क्या चीजें अवेलेबल। अगर बच्चे को कोई किताब पढ़नी है तो चश्मे की वजह से उसकी जो फोटोग्राफ आ जाती है और उसकी जो फोटो होने के बाद वो उसको सुन सकता है। किसी बच्चे को नोट की पहचान करनी है तो उसको नोट को चश्मे के सामने रख दे, चश्मा अपने आप बता देता है कि ये इतने रुपए का नोट।
4: आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा करते हुए एक लाभार्थी ने एम्स की इस पहल की सराहना की और कहा कि ये स्मार्ट विजन चश्मे उनके जीवन में काफी मददगार साबित होंगे।
6: जब मेरे पास ये स्मार्ट ग्लास नहीं था तो टीचर्स आते थे जो कि बोर्ड पर लिख करके चले जाते थे, तो हमारे साथी जितने भी फ्रेंड्स थे नॉर्मल वो तो सब चीजें पढ़ लेते थे लेकिन हमें पता नहीं चलता था जब तक कि टीचर्स नहीं बताते थे। स्मार्ट विजन ग्लासेस से जो मुझे फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम 9th to 12th में, वो मेरे आने वाले साथियों को फेस नहीं करनी पड़ेगी।
4: इससे पहले एम्स ऐसे 53 स्मार्ट विजन चश्मे वितरित कर चुका है जो लाभार्थियों को अपने दैनिक कार्य आसानी से करने में सहायता कर रहे हैं। आनंद कुमार के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने

0: प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का एक विशेष स्मृति अंक जारी किया। यह अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य में संचार, अनुसंधान और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली पुलिस ने आज छात्र पुलिस कैडेट प्रोग्राम के अंतर्गत जहांगीरपुर स्थित के ब्लॉक के राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में ई सुरक्षा पर 16वां सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 80 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं और डिजिटल खतरों से सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2026 के कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब खेलों के वैश्विक मंच पर नई पहचान दर्ज कराने जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के रोमांचक मुकाबले आयोजित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में टिकटिंग, स्वयंसेवकों की भागीदारी और विस्तृत खेलों की समय सारिणी से संबंधित जानकारियां भी जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया सहित 35 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता राजधानी के आधुनिक खेल सुविधाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय आयोजन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगी। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता भारत के उभरते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मंच पर उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि राजधानी को देश की प्रमुख स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नितिका गुप्ता।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। ये पहल 4 नए श्रम संहिताओं के माध्यम से किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर आधारित है, जो 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक स्तंभों के अंतर्गत समेकित करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। राजधानी में आज दिन के समय हल्की धूप रही। अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल आसमान साफ रहेगा, साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में ढकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। हेलो, सलाम, नमस्ते। फिल्म संगीत से सजी गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, योर्स वेरी ओन दीप्ति। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बातें और कुछ खास गीत। तो क्या कहते हैं, करें अपनी रोलर कोस्टर राइड को किक स्टार्ट विद अ सिंपल कप ऑफ कॉफी।

कभी सोचा है दोस्तों, एक सिंपल सी कॉफी भी किसी के साथ हो तो उसका टेस्ट थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और स्पेशल क्यों लगने लगता है? शायद वजह कॉफी नहीं, वो साथ होता है जो हर छोटी छोटी चीज को यादगार बना देता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका और हमारा साथ। वैसे एक बात और है मेरे दिमाग में, कभी कभी ना मुस्कुराहट भी एक कहानी कह जाती है, कभी कभी मुस्कान भी दिल में एक हल्की सी कसक छोड़ जाती है। जब हंसी में भी थोड़ा सा मलाल छुपा हो और जब दिल कुछ कहे और लफ्ज साथ ना दें, तो शायद वही एहसास बन जाता है एक गीत। सुनवाती हूँ आपको एक बहुत प्यारा सा गीत, जिसे सुनने से ज्यादा अगर आप महसूस करेंगे तो शायद जो मैंने कहा वो समझ सकेंगे।

जी हाँ, आपसे ही कह रहे हैं हम। जरा मुस्कुरा दीजिए। वैसे दोस्तों, प्यार में ना एक बहुत क्यूट सी प्रॉब्लम होती है। क्यूट, हाँ क्यूट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो दिल है ये तो किसी पर आ जाता है, लेकिन दिमाग जो है ना ये अपना काम करता रहता है, हल्का हल्का टीज करता ही रहता है कि यार सच में इसके काबिल हूँ भी या बस ओवर थिंकिंग चल रही है। और फिर हर छोटी बात में हम मीनिंग ढूंढने लगते हैं। उसकी एक स्माइल, एक रिप्लाई, एक नजर, सब कुछ सडनली स्पेशल लगने लगता है। और बस इसी स्वीट सी कंफ्यूजन और दिल के हल्के फुल्के सवालों को लेकर सुनवाने वाली हूँ आपको ये अगला गाना। तो अगर आप भी कभी किसी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने लगे हों, उनकी एक हाई पर दिल ने थोड़ा सा ज्यादा धक धक कर दिया हो और सीक्रेटली ये सोचा हो कि काश मैं इसके काबिल बन जाऊं, तो जनाब ये गाना सीधा आपके दिल से कनेक्ट करेगा। थोड़ा सा ब्लश कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और इंजॉय कीजिए।

और दोस्तों, कभी नोटिस किया है, कुछ फीलिंग्स ना बिना नॉक किए दिल में एंट्री ले लेती हैं। ना कोई प्लान, ना कोई रीजन, बस एक नजर, एक मुस्कान और दिल क्वाइटली बोल उठा है कि ओहो, कुछ तो हुआ है। और फिर हर एक छोटी सी बात में वही शख्स नजर आने लगता है। अच्छा, सॉन्ग्स भी ना थोड़े ज्यादा सडनली थोड़े से और ज्यादा रिलेटेबल लगने लगते हैं। तो अगर आप भी कभी बिना वजह मुस्कुराए हैं, कभी आपने भी फील किया है कि किसी एक स्पेशल का नाम आते ही दिल ने थोड़ा ज्यादा धक धक करना शुरू कर दिया है और आप खुद से ही पूछ रहे हैं कि भाई हुआ क्या है, तो जनाब, ये गाना एग्जैक्टली आपके दिल की कहानी है। थोड़ा सा इश्क, थोड़ी सी शरारत और बहुत सारी फीलिंग्स के साथ सुनिएगा।

हाँ जी, तो अभी अभी आपने महसूस किया कि कुछ तो हो गया है। मतलब दिल ने क्वाइटली किसी को नोटिस तो कर लिया है, बिना परमिशन, बिना वार्निंग, बिना पूछे। और अब हालात ये हैं कि हर छोटी सी बात में, हर छोटी बड़ी बात में वही याद आ रहा है। एक रैंडम सी बात भी होती है ना, तो दिल कह उठता है, अरे यार उससे बतानी है, उससे ये बात कहनी है। और पता है क्या, यहीं से कहानी हो जाती है थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग। जब कुछ हो गया है से सफर बढ़कर सब कुछ उसी तक पहुंचने लगता है। मतलब दिल की हर बात, हर फीलिंग, हर छोटी बड़ी कहानी एक ही एड्रेस पर डिलीवर होने लगती है। तो अगर कभी आपने ये स्टेज भी क्रॉस की है, या अगर आप अभी इसी स्टेज पे हैं, तो ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना, ये बिल्कुल आपके दिल की बात है। सुनिएगा जरा।

जी हाँ, तुम तक। अभी आपने महसूस किया ना? और ये कुछ ऐसी फीलिंग है जिसे आप सिर्फ फील ही कर सकते हैं। मतलब कहकर बता पाना, लफ्जों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना? हर दिल की बात, मतलब दिल की हर एक बात, हर एक एहसास जब एक ही शख्स तक पहुंचने लगे, और जब ये फीलिंग थोड़ी और गहरी हो जाती है ना, तो दिल सिर्फ बताना ही नहीं चाहता है, बल्कि उस एहसास में थोड़ा थोड़ा खो भी जाना चाहता है। और फिर वही मोहब्बत, थोड़ी सी और नज़ाकत और थोड़ा और करीब आकर एक छोटी सी ख्वाहिश, एक खूबसूरत सी ख्वाहिश बन जाती है मीठी सी चाहत। तो भाई, अगर कभी आपने भी इस एहसास को दिल से महसूस किया है, या आप कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, तो अब वक्त है उसी प्यार को थोड़ा सा और करीब से जीने का।

0: नहीं भाई, ये ना तो कॉमेडी है ना ये ट्रेजेडी है, ये तो है एक फीलिंग, एक एहसास जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक शुरुआत, एक हल्की सी चाहत जो दिल में चुपके से बिना पूछे बिना परमिशन के अपनी जगह बना लेती है, और जब यही चाहत थोड़ी बढ़ती है ना तो दिल सिर्फ महसूस नहीं करता, थोड़ा थोड़ा बेचैन भी होने लगता है, और फिर वही मोहब्बत थोड़ी सी नज़ाकत छोड़कर थोड़ी सी शरारत थोड़ी सी बेकरारी में बदल जाती है, जहाँ दिल हर पल उसी के बारे में सोचता है और खुद ही खुद मुस्कुराते रहता है। तो अगर आप भी इस प्यारी सी बेचैनी को महसूस कर पा रहे हैं ना, तो अब वक्त है इस एहसास को थोड़ा और करीब से समझने का, सुनने का।
1: है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनको हम बता दें कि आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग, कार्यक्रम चल रहा है गीत मालिका और मैं हूँ आपकी अपनी दीप्ति पाठक निधीश।

फिलहाल तो मेरे हाल का कुछ ऐसा सवाल है कि कार्यक्रम बढ़ रहा है अपने अंतिम पड़ाव की ओर, लेकिन अभी भी गुंजाइश है एक प्यारी सी बात और एक प्यारे से गीत की। तो कभी कभी होता क्या है ना दोस्तों, कि प्यार ना बहुत शोर से नहीं आता, वो बहुत हल्के से चुपके से दिल में उतरता है और फिर हर धड़कन को थोड़ा थोड़ा खास बना देता है। और जब ये एहसास अपने पीक पर होता है ना, तो ये जो दिल है ये बस हंसना चाहता है, जीना चाहता है और उसी एक फीलिंग में खो जाना चाहता है। तो बस आज के इस प्यारे से सफर को यहीं पर एक मीठी सी मुस्कान के साथ मैं छोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत। मैं ये गीत आपके लिए छोड़कर जा रही हूं, और हम बने हुए हैं फिलहाल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गीत मेरा फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और इस गीत के तुरंत बाद हम सुनेंगे समाचार। तो क्या कहते हैं, दीजिए अपनी दीप्ति को इजाज़त कार्यक्रम गीत मालिका से, और बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: इसी के साथ मैं दीप्ति पाठक निधीर साहब से गीत मालिका कार्यक्रम से इजाजत चाहूंगी। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि

0: हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विद्युत हलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
4: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
5: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
6: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार

0: पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित परागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिन्दुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं, वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. And Indian boxers ensure 27 out of 30 medals at Asian Boxing Under 15 Championships in Tashkent. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments, and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. in a joint statement.

0: नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम के सदर की जिम्मेदारी संभालने के एक महीने के अंदर सदर तोलाम का भारत का पहला सरकारी दौरा इस बात को जाहिर करता है कि वो भारत वियतनाम ताल्लुकात को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए भारत वियतनाम के कदीमी चंपा तहजीब के माइसन और नेहान तौ मंदिरों का अहिया कर रहा है।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: उन्होंने कहा कि मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की पॉलिसी और विजन सागर के तहत वियतनाम भारत के लिए एक अहम सुतून है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने और दहशतगर्दी से निमटने के खातिर भारतीय अवाम के साथ यकजहती का इजहार के लिए वियतनाम का शुक्रगुजार है। वियतनाम के सदर तोलाम ने कहा कि वियतनाम 10 बरस की जामे कलीदी शराकत दारी समेत भारत के साथ 50 साल ताल्लुकात के नताइज को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि तरफेन दुनिया की मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल के अजाले की खातिर बेहतर नजरिए और तरक्याती हिकमत अमलियों के साथ करीबी राबते में रहेंगे। आज नई दिल्ली में बाद में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मशरक़ी उमूर के सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तोलाम के दरमियान बातचीत में भारत और वियतनाम दो तरफा तिजारत सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने के खातिर मुत्तफिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने यहां ज़रई अशिया समेत बाजार तक रसाई में सहूलत पैदा करने के सिलसिले में भी इत्तफाक किया है। अद्वियात की भारतीय सनत की तरक्की को तस्लीम करते हुए तरफेन ने 2027 से वियतनाम की अवामी सेहत देखभाल के खातिर भारतीय कंपनियों की शमूलियत के इम्कान से भी इत्तेफाक किया। जनाब कुमारन ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने करीबी इदारा जाति राबतों की हौसला अफजाई के साथ साथ मालूमात तहकीक और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले के फरोग पर भी रजामंदी जाहिर की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा जनरल फैन वैंग जियांग के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत में भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि हालिया पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत सूरतेहाल की अक्कासी होती है। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के मंतजर हैं। मगरी बंगाल में बीजेपी की नई हुकूमत की हलफ बरदारी की तकरीब 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। बीजेपी के रियासती सदर सामिक भट्टाचार्य ने नामानिगारों को बताया कि यह तकरीब सुबह 10 बजे शुरू होगी। पार्टी जराए के मुताबिक इसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के मुख्तलिफ वजराए आला की शिरकत का इम्कान है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मकाम का इंतखाब अलामती है क्योंकि यह जगह बंगाल में अहम सियासी रैलियों और बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा का गहवारा रही है। इस तकरीब में मुल्क के आला रहनुमाओं की मौजूदगी से यह जाहिर होता है कि बीजेपी इख्तदार की मुंतकली को इंतहाई अहमियत दे रही है। टीवी के सरबराह सी जोसेफ ने तमिलनाडु में सरकार तश्कील करने का दावा पेश किया और रियासत के गवर्नर विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के ने दीगर पार्टियों से भी राबता किया क्योंकि उन्हें रियासत में सरकार की तश्कील के लिए मजीद हिमायत की जरूरत है। कांग्रेस ने अपने 5 एमएलए होने के नाते टीवीके की हिमायत का फैसला किया है। उसने आज नामजद वजीर आला विजय से मुलाकात की और उन्हें अपनी हिमायत का मकतूब पेश किया। कांग्रेस ने अपनी देरीना इत्तेहादी पार्टी डीएमके का साथ छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज रियासत में सियासी गहमागहमी का दिन था। मुख्तलिफ सियासी हलकों से तस्दीक और नई हुकूमत की तश्कील के तई पहले कदम का इंतजार जारी था। वाहिद सबसे ज्यादा अक्सरियत वाली पार्टी तमिलागा वैत्री कड़गम टीवीके ने 108 असेंबली सीटें हासिल की हैं और उसने कांग्रेस की 5 सीटों की हिमायत भी हासिल की है। टीवीके ने यूसीके और बाएं बहास की पार्टियों सीपीआई और सीपीआईएम को हिमायत की दावत दी है। एआईएडीएमके ने भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीसामी की क़ियादत में आज शाम एक मीटिंग की। ٹی وی کے سربراہ کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے پارٹیوں کی جانب سے حمایت کا مکتوب پیش کرنا ہوگا. انہوں نے اکثریت

0: साबित करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने मुत्तला किया है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की दस्तयाबी मामूल के मुताबिक है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर इसके खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मुत्तला किया कि मगरबी एशिया बहरान के दरमियान हुकूमत खाना पकाने के लिए एलपीजी के घरेलू सारिफिन को 100% और कमर्शियल सिलेंडर के सारिफिन को 70% तक फराहमी की खातिर सभी इकदाम कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 5 किलोग्राम के तकरीबन 1,20,000 FTL सिलेंडर फरोख्त किए गए। उसने मजीद कहा है कि एलपीजी की जखीरांदोजी और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए मुल्क भर में कार्रवाई का सिलसिला जारी है और कल इस सिलसिले में 2,100 से ज्यादा छापे मारे गए।
3: जो घरेलू कुकिंग एलपीजी सिलेंडर का प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है। जो आपने इंक्रीज की बात की वो सिर्फ कमर्शियल के सिलेंडर के लिए हुई है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस में भी अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है।
1: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने कहा है कि खित्ते में सभी भारतीय मल्लाह खैर आफियत से हैं और गुज़िश्ता 48 घंटे में किसी भारतीय परजंबरदार जहाज के सिलसिले में किसी वाकये की कोई खबर नहीं मिली है। जनाब शर्मा ने मुत्तला किया कि जहाजरानी के डायरेक्टोरेट में कायम करदा कंट्रोल सेंटर्स ने अब तक 8,570 कॉल और 18,732 से ज्यादा ईमेल मौसूल किए हैं। वजारत खारजा में भी एक मुतालिका खसूसी कंट्रोल रूम काम कर रहा है जो भारतीय शहरियों और उनके कुनबों के सवालात का जवाब दे रहा है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि परवाजों के सिलसिले में मजमू सूरत हाल बेहतर हो रही है और खित्ते से भारत के मुख्तलिफ मकामात के लिए इजाफी परवाजें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने जमीनी रास्तों से 2,520 भारतीय शहरियों के ईरान से निकलने में मदद फराहम की है। सालिसों के मुताबिक अमरीका और ईरान एक इब्तदाई माहदे के करीब हैं जो खलीज में जारी तनाजे के खात्मे का सबब बन सकता है। मुजाकरात से वाकिफ जराए के मुताबिक फरीकैन एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमतनामे पर काम कर रहे हैं। मुजवजा माहदे में ईरान की जानिब से न्यूक्लियर अफजूदगी को रोकने पर इतफाक करना शामिल है जबकि अमरीका को पाबंदियों में नरमी करनी होगी। मुजवजा माहदे में मुंजमद ईरानी फंड्स में से अरबों डॉलर जारी करना भी शामिल है। तवक्को है कि दोनों फरीक आबनाए हुरमुस के जरिए नकलो हमल पर पाबंदियों में भी नरमी करेंगे। हुकाम के मुताबिक इसके बाद वसी तर माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 30 दिन पर मुश्तमिल मुजाकरात का एक दौर होगा जिसके दौरान बहरी पाबंदियों और इलाके में अमरीकी बहरी फौज की मौजूदगी को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रोजेक्ट फ्रीडम में तवक्फ किए जाने के ऐलान के बाद रवैये में यह तब्दीली रोनुमा हुई है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: तेहरान इस वक्त अमरीका के 14 नुकाती तजवीज का जायजा ले रहा है जबकि अमरीका को तवक्को है कि अगले 48 घंटे में कई कलीदी नुकात पर ईरान की जानिब से जवाब मौसूल होगा। इस मफाहमतनामे पर अमरीकी एलचियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर और कई ईरानी हुकाम के दरमियान सालिसों के जरिए बातचीत की जा रही है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने इशारा दिया है कि खतरात कम होने के बाद आबनाए हुरमुस को महफूज आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोला जा सकता है। मुमकिन समझौते के तनाजुर में मार्केट में तेजी आ गई है। ऐसा इस उम्मीद के पेश नजर हुआ है कि तवानाई की फराहमी को मुतासर करने वाली जंग शायद अपने इख्तिताम पर है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: भारत के मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में लागत में इजाफे के बावजूद साल 2025-26 की सहमाही में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कॉमर्स और सनत की भारतीय फेडरेशन फिक्की के जरिए मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक एक सर्वे में 93% शुरका की राय में यकसां या ज्यादा पैदावार हुई जो गुज़िश्ता सहमाही में 91% थी। झारखंड के लातेहार जिले में शोरिश पसंदी की रोकथाम की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ममनुआ इंतहा पसंद

तंजीम झारखंड जनमुक्ति परिषद के दो कारिंदों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट कुमार गौरव ने कहा कि जंगलाती इलाके कुरुमखेटा में इंतहा पसंदों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात मिली थी। खबर मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने इलाके की नाकाबंदी की और दो इंतहा पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। जाए वाकये से बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने एक मखसूस टास्क फोर्स साइबर सुरक्षा तश्कील दी है, जो मस्नूई जहानत एआई में हुई तेज रफ्तार तरक्की से पैदा होने वाले साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक खतरात का जायजा लेगी, जिनमें खामियों की निशानदेही करने वाले एआई टूल्स शामिल हैं। सेबी के मुताबिक ये तकनीकें हालांकि बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इनकी तेजी से शिनाख्त करने और निजाम की खामियों का फायदा उठाने की सलाहियत के सबब खतरात में नुमाया तौर पर इजाफा हो सकता है। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने बैरून मुल्क नौकरियों का झांसा देकर साइबर जराइम से मुतालिक सरगर्मियों के लिए भारतीय शहरियों को गैर कानूनी तौर पर जुनूब मशरकी एशिया ले जाने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में मुंबई, दिल्ली और लखनऊ समेत मुख्तलिफ शहरों के 9 मकामात पर छापों की कार्रवाई अंजाम दी गई। एजेंसी ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन समेत कई माली राब्तों का पता लगाया है और अहम इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद जब्त कर लिए हैं। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम के कुछ इलाकों माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। भारत के नौजवान मुक्केबाजों ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में 27 तमगे जीते हैं। आज अंडर 15 की लड़कियों की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 15 में से 14 तमगे हासिल किए, जबकि अंडर 15 लड़कों की टीम ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और 15 में से 13 तमगे जीते। आईपीएल क्रिकेट में आज राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के दरमियान जारी मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए हैं और जीत के लिए 236 रन का निशाना रखा है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया है। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और आबनाए हुरमुस के रास्ते बिला रुकावट नकलो हमल के खातिर एक माहदे के करीब हैं और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। पांच विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर दो दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं
2: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honor of the visiting dignitary. The president said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bua in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jaishankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor along with senior leaders of the party. TVK has approached other parties also as it is short of the majority mark by 11 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Correspondent reports preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. West Bengal BJP leader Suvendu Adhikari's personal assistant Chandranath Rath has been shot dead at Doharia in Madhyam Gram, North 24 Parganas. According to eyewitness accounts, miscreants on a motorcycle followed his car and opened fire at him. Chandranath was rushed to a nearby hospital where doctors declared him brought dead. The driver of the vehicle was also sustained injuries in the attack. Meanwhile, Subhendu Adhikari and other BJP leaders reached the spot. Newly elected MLA from Barakpur Assembly constituency, Kaustav Bagchi, has alleged that this murder was planned by Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. The Ministry of Tribal Affairs has convened a national review meeting with senior officials from central line ministries and principal secretaries of state tribal welfare departments to assess the progress of key tribal development initiatives, including the Dharti Aba Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan and Pradhan Mantri Janjati Adivasi Mahanyay Abhiyan. Center has signed reform-linked MOUs and with Mizoram and Ladakh under Jal Jeevan Mission 2.0 in New Delhi. The MOUs were signed in the virtual presence of the Union Minister of Jal Shakti C.R. Patil and Minister of State for Jal Shakti V. Somanna yesterday. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Punjab Kings by 33 runs at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRI न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 1:10 और 10 सेकंड। साथियों, एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का समय होता है। जी हाँ, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत, ओल्ड हिंदी फिल्म्स, सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। साथियों, ये गीत ऐसे होते हैं जो आज तक सुने जाने वाले गीत हैं, एक से एक बेहतरीन, लाजवाब, जस्ट लाइक सोना, एकदम खरा सोना जैसा खूबसूरत संगीत, खूबसूरत गीत, खूबसूरत गायक, खूबसूरत संगीतकार, खूबसूरत गीतकार, सभी अनमोल एक ही जगह इकट्ठे होकर, यूं कहिए कि एक से एक सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, अनमोल, खूबसूरत रचनाओं का कार्यक्रम होने वाला है। गीत सुनहरे, तभी तो कहा जाता है गीत सुनहरे, बिल्कुल गोल्डन एरा फिल्म, म्यूजिक ऑफ गोल्डन एरा। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार, और मेरे साथ हैं,
4: मैं हूं मनोज कुमार।
3: तो आइए आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत गीत के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गीत, फिल्म भक्त सूरदास से, ये शानदार, माफ कीजिएगा, भक्त सूरदास एक फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब और खुर्शीद की आवाज में शानदार रचना है। भक्त सूरदास 1942 प्रदर्शित फिल्म रही है और इस गीत को संगीत से सजाया है ज्ञान दत्त ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और खूबसूरत रचना।

श्रोताओं, अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रतन से जोहरा अंबाला और साथियों की मधुर आवाज में। संगीतकार हैं नौशाद साहब।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। आइए अगला गीत सुनते हैं सुरैया की मधुर आवाज़ में, फिल्म अनमोल घड़ी से। संगीतकार हैं नौशाद साहब।

श्रोताओं, गायिका सुरैया की आवाज़ में ये मधुर गीत अभी आपने सुना। अगला गीत भी सुरैया की ही आवाज़ में हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म दर्द से। गीत के बोल हैं, चले दिल की दुनिया। संगीत दिया है नौशाद साहब ने।

जी हाँ, श्रोताओं वाकई बहुत ही सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे, लाजवाब बेहतरीन ला खूबसूरत रचना। साथियों ये गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा गीत है और ये गीत वाकई अपने आप में बहुत ही अनमोल है। और जैसे कि हमारे साथी ने बताया था कि हाँ ये गीत वाकई बहुत ही शानदार है, क्या कहते हैं आप? तो वाकई हम कहाँ और तुम वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत है और फिल्म शहीद से 1948 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत गाया है यानी कि गायक हैं सुरेंद्र जी और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को गुलाम हैदर ने। तो आइए सुनते हैं शानदार बेहतरीन रचना।

जी हाँ जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर ऐसा लग रहा है कि सारी रात प्रोग्राम सुनते रहे हैं। वाकई गीत संगीत का वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल गीत अभी आप सुन रहे हैं, और इसी कड़ी में एक और गीत आ रहा है आपके पास, और ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, बेहद खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो ये गीत सच में जब आप सुनेंगे, अच्छा तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो श्रोता साथी होते हैं रात को जिनको नींद नहीं आती है, तो वाकई करवटें बदलते रहते हैं, और ऐसे में उनका एक सहारा बनता है गीत संगीत, है ना। दिल हमसे वो ले गए, जी हाँ दिल हमसे वो ले गए, फिल्म बारादरी से शानदार खूबसूरत

गीत हैं और आवाज से सजाया है मुबारक बेगम, लता मंगेशकर और साथियों ने। ये फिल्म 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और कैटेगरी की हम बात करें तो ये कव्वाली नुमा एक खूबसूरत रचना है और इसे गीतकार हैं इसके खुमार बाराबंकी भी और संगीत से सजाया है नौशाद साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन अनमोल रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, अनमोल, बेहद खूबसूरत रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, और ये गीत नैन खोए खोए। जी हाँ, ये गीत के बोल हैं और मुनीम जी फिल्म, जी हाँ मुनीम जी फिल्म से, जो 1955 प्रदर्शित फिल्म रही, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में शानदार, बेहतरीन रचना। संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को SD बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब। मन नहीं कर रहा है, प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है, तो मन नहीं कर रहा है कि इस प्रोग्राम को हम समापन की ओर लेके चले। लेकिन हाँ, फिलहाल एक और गीत सुनवाना चाह रहे हैं आपको, और ये है चैन मेरा लूटा। ये टाइटल है यानी कि गीत के बोल हैं चैन मेरा लूटा। एक फिल्म है दुर्गा माता। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा माता फिल्म से एक शानदार बेहतरीन रचना आ रही है, जो 1960 प्रदर्शित फिल्म रही है और एस जानकी की आवाज़ में सुंदर रचना है, और गीत विक्रम प्रोडक्शन द्वारा है और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को जी के वेंकटेश ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार और बेहतरीन अनमोल रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत। सुनो जी, सुनो जी, क्या अदायगी थी, क्या वेरिएशंस थी, वाकई लाजवाब, अनमोल। साथियों, आज के कार्यक्रम की यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आ रही है, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारी, सुंदर, खूबसूरत और बेहद अनमोल खूबसूरत रचना। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बता देते हैं, ये फिल्म है दुल्हन है। जी हाँ, दुल्हन है, माफ कीजिएगा, ये फिल्म है अनपढ़, जो 1962 प्रदर्शित फिल्म रही, फिल्म अनपढ़। और एक टाइटल गीत है दुल्हन है। जी हाँ, दुल्हन है, और मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में शानदार बेहतरीन रचना है। अनपढ़ फिल्म 1962 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत से सजाया इस शानदार गीत को मदन मोहन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना आज के कार्यक्रम की अंतिम और बेहद खूबसूरत रचना।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनपढ़ से। घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, क्योंकि थोड़ी देर में 2 बजने वाले हैं और 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। तो इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी समाचार और उसके बाद 2:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउबाज के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की

0: projects worth 33,000 crore rupees launched for the Kumbh Mela. Addressing the closing ceremony of the Kumbh Udyog Sangam and Nashik Investment Summit 2026, he said the city will witness rapid and sustained development. Union Ministry of Tribal Affairs has convened a national review meeting with senior officials from central ministries and state tribal welfare departments to assess progress on key initiatives including the Dharti Aba Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan and the Pradhan Mantri Janajatiya Adivasi Mahanyay Abhiyan. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक की गीत, तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म नमक हराम से।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब संपन्न हुआ, 3 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी

0: इसमें समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
3: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Boa in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jaishankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. In West Bengal, in a shocking incident, Chandranath Rath, a close aide of BJP leader Suvendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyamgram. According to reports, bike-borne attackers opened indiscriminate fire at his car in the Dhoria area. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, sustained multiple bullet injuries and has been shifted to a Kolkata hospital in critical condition. According to sources, 8 attackers on 4 motorcycles followed the car and ambushed it. Soon after the incident, several BJP leaders visited the hospital. Meanwhile, BJP leaders have blamed the Trinamool Congress and accused Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee of involvement. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. Meanwhile, Congress, having 5 MLAs, took the decision to support the TVK and met Vijay and offered the letter of support. In Kerala, discussions to form government is progressing at Thiruvananthapuram. Congress Legislature Party is set to meet this morning, according to KPCC President Sunny Joseph. Union Minister for Science and Technology Jitendra Singh has said that India stands at a critical juncture with its scientific ecosystem, making global contributions in areas ranging from space exploration and vaccine development to quantum technologies and deep sea missions. He made these remarks while addressing the valedictory session of the first Indian National Science Academy and the Capacity Building Commission Administrative Training Program in New Delhi yesterday. The government has debunked an image circulating on social media claiming that Union Home Minister Amit Shah has said that West Bengal will become a dry state from 30th September. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, informed that the image is fake and digitally edited. PIB has further stated that no such announcement or statement has been made by the Home Minister. United States and Iran are edging closer to a preliminary understanding to ease the conflict in West Asia, with regional sources saying a draft memorandum is under active discussion. The reported one-page 14-point framework

0: would open a 30-day window for negotiations toward a wider agreement. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यह समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का। आई श्रोताओं, सुनते हैं सबसे पहले ये गजल पंकज उधास साहब की आवाज में।

श्रोताओं, अभी ये गजल आपने सुनी पंकज उधास साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल पंकज उधास साहब की ही आवाज में।

श्रोताओं, पंकज उदास साहब की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

0: जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। यूँ ज़िंदगी की राह में मजबूर हो गए, वाकई बहुत ही शानदार। मजबूरी भी ना जाने क्या क्या कर जाती है इंसान के जीवन में, है ना। तो वाकई बहुत ही दर्द भरी, लाजवाब, खूबसूरत गीत ओ गज़ल थी, यूँ ज़िंदगी की राह में मजबूर हो गए। इमोशंस जो थे तो बाकी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे, और मेन जो आर्टिस्ट रही वो थी चित्रा सिंह। वाकई बहुत ही लाजवाब गीत और गज़ल। आइए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल आज के कार्यक्रम गीत गज़ल कार्यक्रम के अंतर्गत, आज की आखिरी सुंदर और बेहतरीन गज़ल।
1: गजल गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है। कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे छाया गंगोली,

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई सन 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं, 4:54 और 5 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे, ठीक 6 बजे यानी प्रातःकाल के समय आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी समाचार। और 6:10 पर समय होगा कार्यक्रम वंदना का, जिसमें आप सुन सकेंगे भजन। और 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन।

0: 6:45 पर समय होगा रामचरित मानस का, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 48। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का, 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। 7:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी का आनंद उठाएंगे। 8 बजे आप समाचार प्रभात सुनेंगे और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का और 8:45 पर आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुन सकेंगे। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम उद्योग पत्रिका का, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी 5 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मुद्रा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी क्षेत्र खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बौवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वावधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकान स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.

माने शौखन, मैं हूं आपके योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।